0: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूँ?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
3: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, CEO और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी, तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और CSIR ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
5: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
4: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
6: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
7: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
4: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अप

0: की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असली तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के

0: Daksang ijarangi tsiring palzum tang sonam lamung iski salkane lurik sanazats. Ngaji akashwani lene junjik tangin. Sngato chutso gu chadu kasata tusto tsapi istingne ladak senanga nasul sanazat.
1: अब लद्दाख के BSNL ग्राहकों को मिलेगा तेज इंटरनेट और बेहतर नेटवर्क का फायदा, क्योंकि लद्दाख में शुरू हो चुकी है BSNL की फास्ट 4G सर्विसेज। आज ही अपने नजदीकी BSNL CSC या रिटेलर से अपनी 4G सिम प्राप्त करें।

कसता फिल्म लुई डिग्री में स्टिंगजुक पेका काला पानी फिल्म लु मोहम्मद रफी तंग आशा भोसले इसका ने संचस लाफुलिन लु सोमकन मजरू सुल्तानपुरी यंग लु यंग श्रीकन एस डी बर्मन।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: पर छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: Daksan ye jarangi film elu e digrim sanazats, nga je Akashvani lene juen jiktang en. Sga toi chu tso gutang skarma jip chu janga chaduk, kasata Jammu and Kashmir bank e chindagzat kane digrim J&K bank dairi sanazat.
1: आप सभी का इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। आज के शुमारे में भी शामिल रहेंगे कई सारे मौजूदात, लेकिन शुरुआत करते हैं इदारिया से।
2: दोस्तों, एक अंग्रेजी कहावत है, लेबर समथिंग फॉर अ रेनी डे, यानी आने वाले वक्त के लिए कुछ बचाना जरूर चाहिए। इंसान की जिंदगी जिस कदर बेहतर और खूबसूरत है, उसी कदर इसकी बेसबाती और वक्त के चाल चलन का अंदाजा लगाना मुश्किल है। वक्त कब कौन सी करवट बदले कोई नहीं बता सकता, इसीलिए तो हम समझते हैं कि ऐसे वक्त का सामना करने के लिए थोड़ी थोड़ी तैयारियां अभी से करनी चाहिए। वो वक्त जो एक आजमाइश की सूरत या एक मौका लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाए। बचत की आदत एक आदमी को आने वाले अच्छे और बुरे वक्त में सहारा देती है। वक्त बुरा हो तो उससे निकलने में मदद मिलती है और अच्छा हो तो उसकी खुशियों को दुबाला करने में माउन साबित होती है। हर दिन, हर हफ्ते या हर महीने अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में या रेकरिंग अकाउंट में या किसी दूसरी स्कीमों में इन्वेस्ट करें तो वो पैसा ना सिर्फ महफूज रहेगा बल्कि जमा होकर एक बड़ी रकम भी बनेगा और उस पर इजाफी 4 पैसे बैंक भी अदा करेगा। जब भी आपको जरूरत महसूस हो तो आसानी से आप ये पैसा हासिल कर सकते हैं। वक्त के तकाजे पूछकर नहीं आते। घर के किसी फर्द की खुदा नख्वास्ता बीमारी, बच्चे का एडमिशन, शादी ब्याह, नई गाड़ी, नई जमीन या किसी दूसरे खैरोशर में आपको पैसे की जरूरत हो तो ये बचत आपके काम आएगी। जेके बैंक के एमपेज लाइफ प्लस से आप निहायत ही मामूली रकम का भी एफडी बना सकते हैं जो वक्त जरूरत आपके काम आएगा। लिहाजा समझदारी और दूरअंदेशी का मुजाहरा कीजिए और आज ही से बचत करना शुरू कीजिए।
1: एक जरूरी इतला, जम्मू कश्मीर बैंक के उन बुजुर्ग, माजूर और बीमार ग्राहकों से गुजारिश की जाती है जो किसी वजह से जम्मू कश्मीर बैंक की शाखों पर नहीं आ सकते हैं कि वो जेके बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग से फायदा उठाएं, जहां बैंक के नुमाइंदे उनके घर आकर मुख्तलिफ बैंकिंग सहूलियात जैसे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वसूल करना, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, कैश डिपॉजिट करना या अपने अकाउंट से कैश निकालने जैसी सहूलियात वगैरह शामिल हैं। नॉमिनल चार्जेस के एवज आपको घर बैठे मुयस्सर होंगी, लिहाजा आज ही अपनी बैंक शाख से राबता करें और इन सहूलियात से फायदा उठाएं। दोस्तों, अपने नेटवर्क के फैलाव पर कारबंद जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता दिनों पूंछ के अजोत इलाके में एक नए एटीएम का इफ्तिताह किया, जिससे इस जोन में बैंक के कुल एटीएम्स की तादाद 87 तक पहुंच गई। रस्मी इफ्तिताह डीसी पूंछ अशोक कुमार शर्मा और बैंक के डिविजनल हेड जम्मू अशोक गुप्ता ने अंजाम दी, जिस दौरान जोनल हेड रजौरी राजीव डिगरा और आवाम की एक भारी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर डीसी पूंछ ने बैंक की उन कोशिशों को सराहा जो वो आवाम को राहत पहुंचाने के हवाले से अमला रहा है। उन्होंने कहा कि जेके बैंक की ब्रांच या एटीएम किसी भी इलाके की खुशहाली के साथ मरबूत होती है और हमें यकीन है कि बैंक ऐसी कोशिशें जारी रखेगा। बैंक के डिविजनल हेड जम्मू अशोक गुप्ता ने इस बात का इरादा किया कि अवामी सहूलियात बैंक की तरजीहात में शामिल है और ये कि दूर उफ्तादा और दुश्वार गुजार इलाकों में बेसिक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाना हमारे उस संकल्प का हिस्सा है कि इंक्लूसिव बैंकिंग का हक यहां के हर नागरिक को हासिल है। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि इस सहूलियत से ज्यादा फायदा उठाएं। इस मौके पर मौजूद लोगों ने बैंक के इस इकदाम की सराहना की और इसे खुश आइंद करार दिया।
3: इतने सालों से किराए देते देते लाखों रुपए चले गए, तब भी कहने को किराए का घर है, अपने घर का सपना सपना ही रह गया।
4: अब सपना सिर्फ सपना नहीं रहेगा। जेएनके बैंक हाउसिंग लोन के साथ किराए से अपने घर तक का सफर तय कीजिए। स्टार्टिंग एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ जस्ट 7.35%। स्पेशल ऑफर टिल 6th of July। जेएनके बैंक, आपका अपना बैंक।
1: दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते जम्मू कश्मीर बैंक और हुकूमत जम्मू कश्मीर के माबैन एक MOU पर दस्तखत हुए,
5: जिसकी रूह से मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हजारों डेली वेजर्स और कैजुअल वर्कर्स को जेके बैंक की जानिब से मुख्तलिफ मरात दी जाएंगी, जिनमें 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर भी शामिल है। इस एमओयू पर एक बावकार तकरीब में दस्तखत हुए, जहां चीफ सेक्रेटरी श्री अदल डल्लू, फाइनेंशियल कमिश्नर व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शैलेंद्र कुमार, जेके बैंक के एमडीओ सीईओ अमिताभ चटर्जी और चीफ जनरल मैनेजर आशुतोष सरीन की सरपरस्ती और मौजूदगी में इस एमओयू पर जेके बैंक की जानिब से जनरल मैनेजर राकेश मगोत्रा ने, जबकि जेएनके गवर्नमेंट की जानिब से स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस राकेश कुमार संगराल ने दस्तखत किए। इस एमओयू का मुदाओ मकसद डेलीवेजर्स को मुख्तलिफ बैंकिंग और लोन सहूलियात किफायती शरह पर मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट डेथ और 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट परमानेंट डिसेबिलिटी मुहैया कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर बैंक के लिए ये एमओयू एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी का एहसास है, जिसके तहत समाज के इन अहम अफराद को समाजी तहफ्फुज और माली शमूलियत किस दायरे में लाना है। वाज़ह रहे कि इस इंश्योरेंस कवर के लिए दरकार प्रीमियम की रकम जम्मू कश्मीर बैंक बर्दाश्त करेगा। चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डल्लू ने इस एमओयू को तारीखी करार दिया और इसकी अमलावरी के लिए उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट और जेके बैंक की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस इकदाम से इन लो पेड डेली वेजर्स और उनके अहले खाना को माली और समाजी तहफ्फुज फराहम होगा और नागहानी आफात के दौरान उनकी फैमिलीज के लिए एक माली सहारे का काम करेगा। जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चटर्जी ने हुकूमती कोशिशों की तारीफ करते हुए इन वेलफेयर मेजर्स को फाइनेंशियल इंक्लूजन और सोशल वेलफेयर की जानिब बैंक के अमले इकदामात का मजहर करार दिया। उन्होंने कहा कि हजारों ऐसे डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स को यह सहूलियत बिला किसी इम्तियाज हासिल होगी और बैंक ऐसे लोगों के योगदान को सलामी पेश करता है।
1: दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक को गुज़िश्ता हफ्ते उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब कौमी सतह के इदारे IIBF ने बैंक को अवार्ड ऑफ एक्सलेंस से नवाजा। मुंबई में मुनक्किदा इस तकरीब में ये अवार्ड जेके बैंक की तरफ से जोनल हेड मुंबई फरहान इरफान काउसा ने हासिल किया। इस अवार्ड पर तबसरा करते हुए बैंक के एमडीओ सीईओ अमिताभ चटर्जी ने कहा कि ये एक फक्रिया लम्हा है जब हमारी कोशिशों और काबिशों को कौमी सतह पर एक बार फिर जबरदस्त पजीराई हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि बैंक अपने सिस्टम्स, प्रोसेसेस और ह्यूमन रिसोर्स की नॉलेज और स्किल्स को जदीद टेक्नोलॉजी और नए तकाजों के ऐन मुताबिक बढ़ाता रहता है, जिससे कि हम इंडस्ट्री के हमपल्ला रहे। इस अवार्ड के हुसूल से ये बात साबित होती है कि ह्यूमन कैपिटल अपस्किलिंग के मैदान में बैंक न सिर्फ फुल्ली कॉम्पिटेंट है बल्कि अपने हम असर बैंकों की फहरिस्त में टॉप मोस्ट रैंकिंग पर फाइज है। उन्होंने मजीद कहा कि हर कामयाबी नए चैलेंजेस और नई जिम्मेदारियां लेकर आती है और ये अवार्ड हमें मजीद मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा ताकि ये वकार बरकरार रखा जा सके।
5: दोस्तों, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत काम कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुज़श्त महीने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम राइज की। इस हवाले से जेके बैंक ने भी अब डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं। क्या है ये ECLGS 5.0? इससे किनको फायदे हैं, क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं जेके बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्रेडिट शमीम अहमद से। शमीम साहब, जेके बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है।
6: बहुत बहुत शुक्रिया।
5: शमीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 क्या है और इसे राइज करने के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे?
6: जावेद साहब, ये स्कीम जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये हुकूमत हिंद की तरफ से एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से,
5: DFS
6: से। इसका जो मकसद था वो जो अभी हमारा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो भी हालात आलमी सतह पे जो बने हुए हैं, उनकी वजह से जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारा कारोबार है, वो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी मुतासिर हुए हैं।
5: जी।
6: तो उन बिजनेसों को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत हिंद ने एक स्पेशल स्कीम राइज की हैं,
5: जिसे हम
6: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के नाम से जानते हैं।
5: अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से कौन फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, तो उसके बारे हवाले से आप क्या कहेंगे?
6: देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि इससे जो भी बिजनेसमैन हैं, जिनके हमारे पास वर्किंग कैपिटल लिमिट जिसको हम सीसी कहते हैं, उन सारे बिजनेसमैन को ये स्कीम हम दे सकते हैं।
5: अच्छा, क्या फायदा दे सकते हैं?
6: फायदा ये है कि जो भी उनका लिमिट है, सीसी का एक लिमिट होता है
5: बिल्कुल,
6: जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का,
5: माने पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में
6: जो भी उनकी पीक यूटिलाइजेशन रही है। अच्छा, जितना भी उन्होंने यूटिलाइज किया है,
5: जो यूटिलाइज किया है
6: उसका 20% हम फराहम करेंगे उनको विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी
5: एज एडिशनल क्रेडिट लाइन
6: जी हम देंगे।
5: इस स्कीम के तहत जो पैसा आप देंगे, ये किस सूरत में दिया जाएगा और ये कितनी देर में फिर वाजिब होगा?
6: ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की
5: WCTL
6: जिसको हम बोलते हैं, उसके उसमें क्या है कि पहले साल में खाली उनको इसका इंटरेस्ट पे करना है
5: जी,
6: और उसके बाद 4 साल में इसको वापस करना पड़ेगा।
5: माने अगर कोई आज लेगा जून में या जुलाई में लेगा, तो उसको ये वापस करना है फिर जुलाई 2031 तक।
6: हाँ,
5: पहले साल सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, उसके 4 साल में जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो भरना होगी
6: जी।
5: अच्छा, और ये स्कीम कब तक राइज रहेगी?
6: ये तो जब तक ये गारंटी फी जो हुकूमत हिंद ने दिया है, ये 2,55,000 करोड़, जब तक ये खत्म हो जाएगा या 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
5: तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको जल्द से जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए।
6: फरमा रहे हैं आप, जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको चाहिए कि जल्द से जल्द ये हमारी ब्रांच के साथ रब्ता करे और इस स्कीम का फायदा उठाए।
5: अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि गुज़श्ता कई दफे ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी गारंटी स्कीम लाई है बैंक ने या हुकूमत ने, तो उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से ब्रांचेस को एक बाज़ाबता एक लिस्ट जाता था एलिजिबल बोरोवर्स का, क्या इसमें भी वही तरीकेकार होगा या हर कोई एलिजिबल है इसके लिए?
6: मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना चाहता हूं कि ये स्कीम उनको मिलेगी जिनका अकाउंट SMA 2 में नहीं रहा है। SMA 0 और 1
5: एलिजिबल है
6: लेकिन जो SMA 2 में रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सही फरमा रहे हैं, इस बार भी हमने ब्रांचिंग को ये जो
5: एलिजिबल
6: बोरोवर्स हैं उनका लिस्ट उनके पास है और उनको पता है, ये एक्सरसाइज पहले से हुई है कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है।
5: अच्छा, अब क्या आपकी तरफ से अहकाम सादर किए गए हैं कि ब्रांच रीच आउट करेगा कस्टमर्स को, या कस्टमर्स भी आकर के ब्रांच से अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते हैं?
6: हमारे बैंक में बहुत से जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनको मैसेज ऑलरेडी गई हुई है हमारे ब्रांच की तरफ से। वो जो ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन है वो भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है कि नहीं।
5: नहीं है
6: तो जो एलिजिबल है उनको मैसेज भी गई है, काफी सारी बोरोस को मैसेज ब्रांच से चली गई है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के। मैं थोड़ी सी और इसमें वजाहत करना चाहता हूँ कि इसमें जो अप्लाई करना है बोरोस को, वो जन समर्थ पोर्टल पे, ये सारा उनको ब्रांच में जाने की जरूरत भी नहीं है, वो
5: ऑनलाइन प्रोसेस में
6: जन समर्थ पोर्टल पे, और वहां भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत सिंपल है, सादा है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी डिटेल दे के, ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारी जो ब्रांच है उन तक पहुंच जाती है। तो इसमें उनको मैनुअल एप्लीकेशन देने की जरूरत भी नहीं है,
5: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है,
6: वो घर में बैठ के इस जनसमर्थ पोर्टल पर लॉगिन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो उनकी ये दरख्वास्त है वो हमारी ब्रांच या हमारे बैंक रूट हो सकती है, और जो हमारे बैंक ने इसमें इंटरेस्ट रेट रखी है वो काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है, और जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द इसमें अप्लाई करके इस स्कीम से फायदा उठाए।
5: शमीम साहब, ECLGS 5.0 के हवाले से ये कारामद गुफ्तगु के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
6: शुक्रिया। थैंक यू।
4: एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए।
7: और अब इनामी सवाल की बारी।
1: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि हालिया दिनों जेएनके बैंक को कौमी सतह पर किस जुमरे में और कौन सा अवार्ड हासिल हुआ।
7: इस सवाल का सही जवाब है गोल्ड अवार्ड इन फिनेकल इनोवेशन।
1: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें दिए गए बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे तीन विनर्स हैं
7: कश्मीर डिवीजन से खुनमू श्रीनगर के तोहा पीर, जम्मू डिवीजन से रामबन के सविंदर सिंह और लद्दाख से हुंदू लेकी रिगजिन डोलमा।
1: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
7: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
1: दोस्तों, आपको बताना होगा कि पुंछ राजौरी जोन में जेएनके बैंक के एटीएम्स की कुल तादाद कितनी है।
7: आपके जवाबात हमें 20 जून शनिवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। याद रहे कि अपने जवाबात में आप अपना नाम, पता, 16 डिजिट का अकाउंट नंबर और फोन नंबर लिखना ना भूलें।
1: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए, और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
7: 1-800-890-2122
1: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
7: www.jkb.bank।
8: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जेएनके बैंक।
0: दखसंगी चरंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चिंदाजत कने डिग्रेम जैन के बैंक डायरी सनाजात आज आकाशवाणी लेने चुनजिक तंग इन स्नातो छुचो छुचो छादु कसता ठुगुने डिग्रेम ठुगी स्किचल संचसला फुलिन दिरिंगे डिग्रेम नंगा लोपठु खखलिन कन गुन स्टानजिन लाडुल जेसा लांगमो स्कर्मा छोजडोन रिंचे नंगमो दिस्कित लाडुल स्टानजिन डोलकर मिनतो सेवांग छोजडोल तंग स्टानजिन नंगमो डिग्रीम फुलकन देचे न्यांगडोल यांग डिग्री में गोडिक जातकन सिरिंग छोरूल।

बंदा ही हाजिर है जी, और आप भी हाजिर हैं। हमें पता है बहुत सारे मैसेजेस दिल का मेल बॉक्स में खुले पड़े हैं, इतने को पढ़ देना तो हमारे लिए संभव नहीं होगा। इस प्रोग्राम के आगे के प्रोग्राम भी खत्म हो जाएंगे, इतने सारे नाम हैं, फरमाइशें हैं। लेकिन आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम जितने नाम पढ़ सकते हैं उतने तो पढ़ेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ हैं तो हम आपकी कद्र ना करें ऐसा हो नहीं सकता। कोशिश करेंगे कि हम हर एक नाम पढ़ डालें, और अगर हो सके तो सभी गाने भी बजा डालें। लेकिन ऐसा सारा दिन आप सुनते रहिए, आपकी फरमाइशों के गाने भी आते ही रहेंगे, कुछ इस दिल का मेल बॉक्स में भी आ जाएंगे। और दिल का मेल बॉक्स ये AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विजय के साथ खुला हुआ है। आप में से जिन दोस्तों ने अभी तक नंबर नोट नहीं किया था वो भी कर लें, 9868686753 ये व्हाट्सएप है नंबर। इस पर आप मैसेज भेज सकते हैं, अपना नाम भेजें, जगह का नाम भेजें तो काफ़ी होगा। कोई गाने की फरमाइश भी आप भेजना चाहें आपको लगे तो भेज दीजिए, हम कोशिश करेंगे। अगर सुनवा पाए तो कम से कम आपका नाम तो पढ़ देंगे ना। FM Gold AIR Delhi @gmail.com ये हमारी ईमेल आईडी है, जिस पर आप अपनी फरमाइशें व्हाट्सएप नंबर के अलावा इस पर भी भेज सकते हैं। वैसे व्हाट्सएप थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्टिंग रहता है क्योंकि एकदम से खुल जाता है ना सामने सामने। खैर तो पहला गाना पहले बजाऊं, वो भी एक फरमाइशी गीत है, और इतने सारे नाम पढ़ने हैं तो कुछ नाम तो अभी पढ़ दिए जाएं। ये है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, संयम मुस्कान, मास्टर जीवराम दिग्दर्शन, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी, राजेश कुमार मोहन गार्डन दिल्ली से, मुंबई से अनु बड़जात्या, शमसुल खान, अनुराज बेनारा, शीना नायर मंगलौर कर्नाटका से, हिमानी शर्मा सहारनपुर से, देवेंद्र अरोड़ा देहरादून से, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से, मास्टर अशोक वर्मा अर्चना, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र शेख मूसा, राजकुमार बोडाना सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश, जगताप, मजनू कटीला से, कमल बालूजा, मधु सागर और सतना MP से, उमंग मलिक, आकांक्षा माही, ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, और पद्मा टाकिच नेपा नगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगलाबेन, राजेंद्र और वेद प्रकाश मोदी नगर गाजियाबाद से। इसके अलावा मरहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सोहेल हसन, रशीद वारसी, अनम यशफ और भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार, इन सभी दोस्तों ने फरमाइश की है। इन सभी दोस्तों ने नहीं, इनमें से हमारे एक दोस्त ने बैजू बावरा का ये गाना सुनने के लिए, हमें भी पसंद है आपको भी पसंद है तो चलो हम दोनों को ही पसंद है तो सुन लेते हैं।

ये दोस्तों एक अगला गाना तो बहुत ही प्यारा आने वाला है हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में, और हेमंत साहब आपके और हमारे पूरी दुनिया के मनपसंद गायकों में से एक हैं। इतनी रोमांटिक आवाज़ के साथ कुलदीप बग्गा ने दिल्ली गोविंदपुरी से उनकी फरमाइश भेजी, लेकिन उससे पहले हम कुछ और नाम पढ़ दें तो अच्छा होगा। उत्तम नगर वेस्ट से जयराम खोरवाल, सचिन अमन दीपांशु, कस्बा गन्नौर उत्तर प्रदेश से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, वारिया ताहिरा, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, नवाब अहमद भारती, शबाना अरहान अहमद, सूफिया नवाब बलीमारान से, और पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से, चंडीगढ़ सिटी सतीश अनेजा बिमला, बठिंडा रोड माही डबवाली से राजेंद्र नारंग और अंजू मोहित तानिया। आप में से कई दोस्त तो इतने पक्के हैं ना मैसेजेस भेजने में कि बस तैयार ही रहते हैं, एकदम से ठक से बटन दबाते हैं मैसेज सेंट, सब कुछ टाइप किया होता है ना। हमें भी आपके नाम याद होते जा रहे हैं। ये गाना सुनिए, इतना प्यारा गीत, बहुत दिन बाद मैंने मजबूर 1964 में आई थी, और सदाबहार रुमानी गाना जो हम सुनने जा रहे हैं, विश्वजीत और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना। इसको अपनी मखमली और जादुई आवाज में हेमंत कुमार ने गाया है, कल्याण जी आनंद जी की मशहूर जोड़ी ने इसका संगीत संयोजन किया है। आइए सुनते हैं।

0: टैलेंट तो है पर स्टेज कहाँ है?
1: स्टेज आ गया है, दिल्ली सरकार लेकर आई है दिल्ली टैलेंट हंट, क्योंकि ये सिर्फ स्टेज नहीं, ये हौसलों की उड़ान है।
0: मतलब सिंगिंग, डांसिंग, थिएटर, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सब चलेगा?
1: बिल्कुल, डिजिटल आर्ट, विजुअल डिजाइन, स्कल्पचर और म्यूजिक कॉम्पिटिशन भी। अगर टैलेंट है तो पूरा देश देखेगा तुम्हारा जलवा।
0: और विनर्स को क्या मिलेगा?
1: कैश प्राइजेस, फर्स्ट प्राइज 2.5 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 2 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 1.5 लाख रुपए और फोर्थ प्राइज 1 लाख रुपए।
0: दिल्ली टैलेंट हंट, हौसलों की उड़ान, यंग टैलेंट के सपनों को दे एक नई पहचान। रजिस्टर करें आज ही www.dellytalenthunt.com। कला संस्कृति एवं भाषा विभाग, दिल्ली सरकार के सौजन्य से।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के?
2: अब 0 रुपए कैसे दो?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर हैं हम फिर से दिल का मेल बॉक्स में। जोगी राम दंसना विलेज ओडिशा से मैसेज भेजते हैं और ये नाम बहुत नीचे है, फैसल इमाम मोहम्मद अफसल अकमल प्रवीण होदा, माफ कीजिए, जोहानुल होदा नफीसा प्रवीण, ये अररिया बिहार इयात कॉलोनी से मैसेज इन्होंने भेजा। और ये साहब हैं श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से। फूल पत्ते बनाने के बजाय ना दोस्तों, अपना नाम सीधा लिखो और जगह का नाम लिखो तो आप उनको थोड़ा सा आसान होगा ना आपका नाम पढ़ना। क्या बोलता, जॉन डिकॉस्टा, रोजी डिकॉस्टा, पर्ल डिकॉस्टा, डिकॉस्टा विलिस, जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने संदेशा भेजा है। और ये साहब कौन है, देहरादून से आलोक पवार और मिनी है। और ये नुसरत बेगम, बेबी अरीबा, हबीबा, खलील कुरैशी, पटियाली रोड, गंज डुंडवारा, नाम लेने में मजा आ जाता है, उत्तर प्रदेश से। ये मोहल्ला चौहल्दा बागपत से।

जय नमन और अपार ढींगिया। दोस्तों, अपना नाम बार बार क्यों भेजते हैं आप? एक बार जो आपने अपना नाम भेज दिया काफी नहीं है? सुनील, कमल, दीपिका, गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक, नहीं मतलब आप, हम चाहेंगे बार बार भेजें, लेकिन क्या है कि आपका नाम बार बार सामने आ जाता है तो फिर उन दोस्तों के नाम भी तो छूट जाते हैं ना जो बेचारे पहली बार ही मैसेज भेजते हैं। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से इन लोगों ने मैसेज भेजा था जो नाम मैंने अभी पढ़े। इसके अलावा ये है साहब अनिल मोहन, उषा, टिल्लू, मधु, पहाड़गंज, मुल्तानी, ढांढा से, और ये साहब है रघुवीर नगर से, कौन क्या नाम है, और दीपू, विक्की, पूना राम और यश, धूमधड़ा, ये कोई नाम है, इनका सरनेम है। और ये साहब हैं इज्जत फिल्म से, फरमाइश भेजिए, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, हम क्या करें, आपका नाम पढ़ देते हैं। दतरंगी भाटपाड़ा, छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल वर्मा। ओ भाई साहब, इतने सारे नाम, कितने सारे नाम, क्या क्या करें। गांव फ्रांसिस हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद, पुष्पेंद्र, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला, गांधी चौक बाड़मेर से बबलेश पवार, डैनी मनीष, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डोगरी से बाबूराम जयपाल, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श, खलीफा जिला सिरसा हरियाणा, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, देव अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या और सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन, शांति नगर, सोनीपत से, झज्जर हरियाणा से, तो नाम आपका हमने पढ़ा ही था, बिट्टू भाटिया और रीटा का, संदीप मक्कड़, मनोहर लाल गांधी, धर्मवीर, कमल साहनी, बुत्ती राम हांडा, जोगिंदर पाल, मक्कड़, बिंगा वाला चौक, गुराया, जलंधर से, सेक्टर 67 मोहाली, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल वर्म शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र, साहिल बिट्टा, ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत कुमार, संचित वायल। इतने नाम पढ़ूंगा ना दोस्तों तो हमें जो नए सुनने वाले हैं वो अपना बदल देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं हम नहीं जाने देने चाहते। रुकिए रुकिए, गाना सुनते जाइए, किशोर दा की आवाज में क्या शानदार गाना है, कोई तो बहुत प्यारा गा था। और खास बात ये, इस गाने के पिक्चराइजेशन में धर्मेंद्र साहब की जो स्क्रीन पर मौजूदगी है ना दोस्तों, इसे कहते हैं मौजूदगी, क्या बात है, क्लासिक गाना, किशोर दा की भावपूर्ण आवाज, साहिल लुधियानवी का लिखा गहरा ये गाना और रवि की धुन।

क्या बात है साहब, क्या पुराने जमाने के दर्द भरे गाने। कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली सरवत, सानवी दत्रेंगी, भाटपाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि पुष्पेंद्र नोखेलाल, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अशोक मोहन, उषा टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, द्वेंदु भूषण संस्कृति पौरुष, संबल कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी राजकोट से रश्मि झरना भरत कुमार, अलीका डबवाली बसंत सिंह चन कुलदीप गांधी, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। दोस्तों इससे आगे नाम नहीं पढ़ूंगा क्योंकि अगला गाना रात की फील वाला है, लेकिन इतना प्यारा लता जी का इतना मीठा गीत है कि बस दिन में भी बहुत सुकून देगा और आपको ये गाना सुनना ही चाहिए।

कस्बा रघुपुरा ग्रेटर नोएडा कोमल प्रसाद शर्मा उत्कर्ष कौशिक योगेश जैन गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी वीना मस्कीन आशीष राजा चैतन्य मस्कीन परिवार से हैं मेधा और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित केशु रिधन खुराना खुर्जा उत्तर प्रदेश से अरोड़ा परिवार तिलक राज प्रकाश चंदन अंकुश हिंगड़ी अलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जिला जगदीश धाकड़ नाइमा रंजू बाई युवराज सिंह शिवांगी आप सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया क्योंकि और नाम पढ़ना हमारे लिए संभव नहीं है। लता जी का एक प्यारा सा गीत इसके साथ हम अपने प्रोग्राम को अंजाम पर पहुंचाते हैं। बने रहिए एफएम गोल्ड के साथ। विजय इसके बाद मिलेगा नहीं हालांकि दिल आज के मेहमान आपके साथ सुनेगा। इस गाने की फरमाइश की थी रानी ने दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों के स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि यह किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले समग्र स्वास्थ्य, मानसिक आरोग्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य को बढ़ावा देने में योग की भूमिका का उल्लेख किया है। तजिकिस्तान के दुशांबे में योग सत्र में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि योग उन शाश्वत मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो विश्वभर में लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। इस वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस की थीम है मानवता की एक बूंद, रक्तदान करें, जीवन बचाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के फसल उत्सव राजा के अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने राजा को मॉनसून के स्वागत का त्यौहार बताया। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुँचने की संभावना है। ICC महिला T20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप में स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद जीत दर्ज करते हुए हैती को 1-0 से हरा दिया। जॉन मैकगिन के पहले हाफ में किए गए गोल की बदौलत स्कॉटलैंड ग्रुप सी में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has arrived in Nice, France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. During his stay in France, he will join French President Emmanuel Macron in jointly inaugurating Bharat Innovates and hold bilateral talks with him on key areas of cooperation and global issues ahead of the upcoming G7 summit. Mr. Modi will later travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. At a community reception held at the iconic Hotel Negresco yesterday, a large gathering of the Indian diaspora

0: से आप मिल चुके हैं जब हम रंजीत जी को लेकर आए थे। आपके लिए बहुत सारी हमने बातें की थी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी।
1: धन्यवाद रश्मि, हमेशा की तरह अच्छी सी मुस्कान के साथ आपने कार्यक्रम शुरू किया और मीठी आवाज में मुझे लोगों तक पहुंचाया। यशिका आपका भी स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: यशिका एक लड़की जो दिल्ली में रहती थी, जिसकी आंखों में सतरंगी सपने थे, जो चूमना चाहती थी आकाश को, जिसकी आवाज में मिठास थी, जो गाती थी तरंगों के साथ और घूमते घूमते तितलियों की तरह ना जाने कब वो पहुंच गई मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई का सफर कैसा था?
2: बहुत ज्यादा संघर्ष, लेकिन उतना ही सुंदर भी। बिकॉज मुझे लगता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो, मुश्किलें बहुत ज्यादा आती हैं, बट जब आप उससे बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि दैट इज वेयर यू गेट विंग्स टू फ्लाई। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आप इंसान की तौर पे बदल जाते हो, आप एज एन आर्टिस्ट बहुत ज्यादा बदल जाते हो। बिकॉज टू सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, टू रीच जहाँ पे आपको पहुंचना है, उसमें बहुत तराशना पड़ता है अपने आप को। वो जितना डिफिकल्ट होता है, वो उसकी अपनी एक बहुत अलग तरीके की ब्यूटी भी होती है। तो वेरी वेरी होलसम रोलर कोस्टर राइड, जिसे बोलते हैं हम अंग्रेजी में, बट वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट आई कुड टेक दिस स्टेप। आसान नहीं होता है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ग्रेटफुल हूँ कि वो हमेशा से मिला। तो यस, ऑल इन ऑल वेरी वेरी ब्यूटिफुल, कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल।
1: पहला ब्रेक कब मिला, कैसे मिला?
2: पहला ब्रेक एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत ही रैंडमली मिला। 2013 जुलाई में मैं बॉम्बे गई और उसके जाने के कुछ एक साल बाद ही मैं ऐसी एक वहाँ पे ऑडियो गैराज करके एक स्टूडियो है, वहाँ पे आई टू गो एवरी डे क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स आते थे। तो कुछ कॉन्टैक्ट्स बना के वहाँ वहाँ पहुंची एंड एक दिन ऊपर बस हम लोग चाय पी रहे थे और नीचे दो एग्नेल और फैजान करके दो कंपोजर्स हैं।
1: अच्छा।
2: उन्होंने ऐसे बोला कि हम एक गाना ट्राई कर रहे हैं फिल्म का, आप गाओगे क्या? आई सेड व्हाई नॉट, माइक के आगे खड़ा कर दो, दैट्स वेयर आई एम द हैप्पीएस्ट। एंड दैट वॉज इट। जावेद अली जो बहुत फेमस सिंगर है, उनके साथ जिगरिया फिल्म में इश्क है नाम से गाना था, उसमें एक छोटा सा पार्ट, मेरी दो तीन लाइंस थी। मुझे पता भी नहीं था कि वो आने वाला है, मैंने बस गा दिया और फिर मैं भूल गई बिकॉज मुझे पता नहीं था कि क्या प्रोसीजर होता है, आपको बताते हैं नहीं बताते हैं, दे वुड कॉल यू। कुछ नहीं, मैंने गा दिया और फिर ऑलमोस्ट 7-8 महीने बाद मैं अपनी म्यूजिक क्लास में बैठी थी। वहां पे जो एक और फेलो स्टूडेंट थे, उन्होंने मुझे आके बोला कि अरे तुमने जावेद अली के साथ गाना गाया। मैंने बोला अरे कौन सा गाना, मुझे याद नहीं था। दैट वाज द फर्स्ट स्मॉल बिग ब्रेक।
0: जब आपको पता चला कि ये गाना अब इतनी बड़ी स्क्रीन पर आ चुका है, फिल्म में आ चुका है और एक हीरोइन पे मुझे लगता है वो गाना फिल्माया गया था, उस समय जो मन में जो भाव उठे वो क्या थे?
2: बहुत एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो बिलीव नहीं हुआ ना कि आप जो करने आए थे वो आपको एक साल में कैसे मिल गया। दो तीन लाइन्स थी, बहुत बड़ी फिल्म भी नहीं थी, बट जावेद अली के साथ अपना नाम जुड़ना, वही बहुत ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी बात है। और मुझे कभी कभी ये भी सोच के लगता है कि I don't remember the exact time when I decided that I want to sing for movies. हम म्यूजिक क्लास जाते थे, पापा मुझे म्यूजिक क्लास भेजते रहते थे, रियलिटी शो के ऑडिशन होते थे, सब होता रहता था। वो सपना कब बना, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम।
1: अच्छा।
2: तो वो जब हो गया तो मुझे लगा अरे यहाँ से कुछ स्टार्ट हो रहा है।
1: तो आपने कहाँ से म्यूजिक सीखना शुरू किया, शुरुआत कहाँ से हुई?
2: समर वेकेशन में सब बच्चे कुछ ना कुछ क्लासेस करते हैं, सो माई फादर वॉज हेलबेंट कि म्यूजिक क्लास जाना ही जाना है। कुछ तो करके उन्होंने एक टीचर को ढूंढ लिया, तो मेरी जहाँ मैं रोहिणी में रहती हूँ उस बिल्डिंग में नीचे ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने 4-5 बच्चे इकट्ठे हुए और उन्होंने उनके म्यूजिक टीचर को बुलाया स्कूल के, जिनका नाम था अश्विनी सूजन जी। वहां से हमने क्लासेस शुरू की एंड वो स्टार्ट तो हुई 4-5 बच्चों के साथ क्योंकि सब वेकेशन थे, बट 2 महीने के बाद छुट्टियां जब खत्म हुई गर्मियों की तो बाकी सबने छोड़ दिया, बट मैंने
1: जारी रखा
2: और वो फिर चला 9-10 साल तक चला।
0: अनीता जी, मुझे लगता है कि अगर हम चमकीला फिल्म की बात ना करें इस समय इस मुकाम पर,
1: बिल्कुल तो,
0: हाँ, जिसकी चमक जिसे कहते हैं ना कि हम बिल्कुल महसूस कर रहे हैं इस समय, और वो गाना सुनने के लिए ना मैं तो इतनी बेचैन हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं सबसे पहले वो गीत सुन लूँ इनकी आवाज
1: जी जी बिल्कुल
0: और सुनवाऊँ अपने सुनने वालों।
1: बिल्कुल। तो यशिका, हमारे सुनने वाले आपसे वो गीत सुनना चाहेंगे।
2: तू

0: कोई जाने या ना जाने, लेकिन हम जानते हैं कि याशी का सिक्का जो है वो टैलेंट का एक खजाना है.
1: खजाना है, बिल्कुल बिल्कुल. और इसी में मैं जोड़ना चाहूंगी, मैंने द लेजेंड एआर रहमान का एक इंटरव्यू देखा था और उस इंटरव्यू में एआर रहमान आपके बारे में बात कर रहे थे और मुझे सुन के और आपको बता करके, अपने श्रोताओं को बता करके गूज बम्स आ रहे हैं कि वो ये कह रहे थे कि सबसे पहले मैंने ये गाना श्रेया घोषाल को दिया और श्रेया घोषाल ने किसी कारण से उसके लिए वो नहीं आ पाई, मना किया. और उसके बाद कहने लगे कि मैंने पंजाब से कुछ सिंगर्स बुलवाए थे और उनको कहा कि आप ऑडिशन दीजिए. उन्होंने ऑडिशन दिया. इन बिटवीन यशिका सिक्का से भी मेरी बात हुई. मैंने उनकी आवाज को सुना और उनकी आवाज में एक फ्रेशनेस थी, उनकी आवाज में एक अलग तरह की खनक थी, चमक थी और मुझे लगा कि यस, शी इज द पर्सन, यही वो लड़की है जो इस गाने को गा सकती है. तो एक लेजेंड ए आर रहमान का एक नई लड़की के लिए ये कहना कितना मायने रखता है और आपको कैसा लगा ये सुन के?
2: बहुत बहुत बहुत बहुत मायने रखता है, बिकॉज हम सबको पता है श्रेया घोषाल जी खुद एक लेजेंड है, उनको छूना बहुत मुश्किल है. उनको छोड़कर किसी एक नई लड़की पे ट्रस्ट करना, इट मीन्स एवरीथिंग एंड मोर. एंड मुझे याद है जब गाना पहली बार उन्होंने मुझे सुनाया और बोला कि इसे ट्राई करते हैं, तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा मिला कि द ए आर रहमान इज टेस्टिंग. एंड तू क्या जाने, मुझे से लगता है कि उन गोल्डन मेलोडीज में से एक है. जैसी मेलोडीज बार बार नहीं बनती, इसीलिए आई फील लाइक आई एम वेरी वेरी लकी. ऐसे गाने अब बनते भी नहीं है और इतनी बड़ी मेलोडी के साथ किसी नई लड़की को ट्रस्ट करना, आपका कॉन्फिडेंस अंदर से एक हो जाता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है बट कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है. तो वो जो रिकॉर्डिंग था, मुझे सब पूछते हैं कि उसमें डर लगा कि नहीं लगा. एंड मैं सबको यही बोलती हूँ कि डर था बट सर इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे कि अरे नहीं, ये तो तुम्हारा गाना ही है, जाओ गा दो. 10 मिनट में हमने शायद थोड़ा उनके साथ जैम किया जब उन्होंने मुझे गाना सुनाया, 10 मिनट बाद माइक पे भेज दिया और मैंने बोला कि नहीं सर अभी थोड़ा मुझे और प्रैक्टिस करने. तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, यू विल बी एबल टू डू इट. एंड इट वॉज इट, रात के कुछ 2:30 बज रहे थे.
1: तो कितना समय लगा रिकॉर्डिंग में?
2: सो द फर्स्ट, इस गाने के बहुत सारे इटरेशंस हुए क्योंकि जब शुरू में पहली बार जब गाना बना तो सिर्फ मुखड़ा था सर के पास और लिरिकली भी सिर्फ पहली लाइन थी, तू क्या जाने मेरे यार है. तो उसके बाद सिर्फ धुन थी उनके पास, तो हमने सिर्फ वो मुखड़ा रिकॉर्ड किया, कुछ अराउंड आधे पौने घंटा वो सब किया. उसके बाद फिर इरशाद कामिल जी ने लिखा, उसके बाद भी लिरिक्स में बहुत चेंजेस हुए. रहमान सर

0: परफेक्शनिस्ट हैं फॉर अ रीज़न, इज़ अ लेजेंड फॉर अ रीज़न. तो वो गानों में छोटी छोटी मुर्कियाँ ऐड करते ही रहते थे. हमने ये गाना 6 महीने तक गाया ऑन एंड ऑफ.
1: अच्छा,
0: ऑन एंड ऑफ, ऑफ कोर्स नॉट एवरी डे, बिकॉज वो इतनी सारी फिल्में करते हैं. और चमकीला के बहुत सारे गाने थे जिनको मैंने ट्राई किया, तो बहुत काम चल रहा था. बट तू क्या जाने के कम से कम 4 या 5 वर्जन हम लोग ने ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स गाए.
1: तो कोई चीज निखर के तभी आती है जब उस पर लगातार प्रयास होता है. अगर हम 5 मिनट या 7 मिनट का जो गीत सुनते हैं उसके पीछे कितनी लंबी तैयारी होती है. खुद जो कलाकार होता है वो स्टूडियो स्टूडियो जब जाता है और जब एक फाइनल प्रोडक्ट निखर कर आता है तो कुछ ऐसा गीत बनता है. तू क्या जाने मेरे यार. याशिका, एक स्ट्रगलर जब मुंबई में पहुंचता है तो क्या होती है उसकी स्ट्रगल की कहानी और कितना उसको भटकना पड़ता है. बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस समय संगीत सीख रहे हैं, वो चाहते हैं आपकी तरह कुछ बने और छा जाएं, म्यूजिक में कुछ कर जाएं. उनको थोड़ी सी अपनी झलक दो उस समय की कि किस तरह से आपने संघर्ष किया है.
0: मैं सिर्फ अगर अपनी बात करूं तो मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं म्यूजिक को प्रोफेशनली, यू नो, आईड एवर टेक इट अप. इट वाज ओनली बिकॉज माय फादर थॉट हैड ह्यूज बिलीफ इन मी. तो करते करते करते करते बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद, बहुत सारे नेगोशिएशंस के बाद कि मैं पढ़ाई करनी है या म्यूजिक करना है, करने के बाद बॉम्बे पहुंच तो गई, बट वहां पर किसी को जानती नहीं थी. और क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी सिंगर बनूंगी, प्रोफेशनली कभी करूंगी, तो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल बोलेंगे या टफ थिंग टू डू वॉज अपने आप पे बिलीव करना कि ये कर सकती हूँ. यहाँ पर अगर आई हूँ, किसी वजह से आई हूँ, अभी तक अगर ये इतने सालों से चल रहा है उसके कोई मायने हैं. आई माइट बी वेरी रॉ, मैं शायद उतनी परिपक्व नहीं हूँ, लेकिन एक फाउंडेशन है जिसपे हम ऊपर एक, यू नो, बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं. तो मेरे लिए ऑनेस्टली सबसे बड़ा स्ट्रगल यही था, टू बिलीव इन माई सेल्फ. और आप जब बॉम्बे जाते हो, किसी को जानते नहीं हो, इट्स नॉट अ सैलरीड जॉब, आप फ्रीलांसर हो, तो ऐसा नहीं है कि आप महीने में थोड़ा भी काम करोगे तो आपको पैसा मिल ही जाएगा. एवरी डे यू हैव टू डिग अप अ न्यू वेल. दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्ट्रगल, सो टू से. आई डोंट लाइक टू यूज द वर्ड स्ट्रगल क्योंकि मुझे लगता है अपने काम के लिए इसको मेहनत ज्यादा बोल सकते हैं. स्ट्रगल शायद नहीं बोले अब तो बेटर है, क्योंकि इतना तो हम अपने काम के लिए कर सकते.
2: जाहिर बात है कि जब आप मुंबई गई तो ये सोचकर ही गई थी कि मुझे सिंगर बनना है.
0: हाँ,
2: है ना. और फिर वहां पर कैसे स्टूडियो में पहुंचती है, किस तरह से लोगों से कॉन्टेक्ट करती है, तरीका क्या रहता है, और फिर कैसे हर कदम पे उसके सामने मुश्किलें आती हैं, थोड़ा सा ये बताएं.
0: एक मुश्किल ये थी कि मैं जब गई थी तो मैं कुछ 22 साल की थी, और मैं जिस भी स्टूडियो में जाती थी देवर ऑल मैन अराउंड, उनमें से कोई भी 40 की उम्र से कम नहीं था. तो मेरे लिए एक स्ट्रगल ये भी था, यू नो, हाउ टू टॉक टू देम. इट्स सो अमेजिंग टूडे दैट हमारे स्टूडियो में 3 औरतें हैं. इट इज सो ब्यूटिफुल अ फीलिंग, आई कांट टेल यू. वरना जिस भी स्टूडियो में जाते थे सिर्फ आदमी होते थे. उस टाइम नहीं समझ आता था, बट जब मैंने वापस मुड़ के देखा तो वो एक चीज होती थी, एक डिस्कम्फर्ट होता था. आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ो, कोविड में पढ़ो, दैट डजंट मैटर, देयर इज अ वे. एक वो चीज थी. और दिल्ली से मैं जब गई थी मेरे पास 0 कॉन्टैक्ट थे, तो मैं वहां पे जाके ऑर्केस्ट्रा के शोज करती थी, और वो मुझे नहीं करने थे क्योंकि आई वॉज अ मिसफिट देयर बिकॉज ऑफ माई वोकल रेंज. आई वॉज अ मिसफिट देयर, तो मुझे वो नहीं करना था. तो पहले मैंने पैसे कमाने के लिए किया, कुछ वॉइस ओवर्स की जॉब भी की, मैंने वॉइस ओवर्स करना सीखा. मैं आज भी वॉइस ओवर्स करती हूँ एड्स के लिए.
1: अच्छा.
0: तो वो सब करना सीखा सो दैट आई कैन, यू नो, जस्ट गेट बाय और पैसे मिलते रहे. फिर मैंने वो ऑर्केस्ट्रा के शोज किए, और फिर एक पॉइंट आया जब मुझे लगा कि अगर मैं ऑर्केस्ट्रा के शोज करती रहूंगी तो मैं आर्टिस्टिकली कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगी. मैं वही गाने गाऊंगी जो पहले गाने लोग गाते थे. मेरी खुद की आवाज क्या है? अगर मुझे कोई एक फ्रेश सेट ऑफ लिरिक्स और मेलेडी मिलता है, उसको मैं इंटरप्रेट कैसे करती हूँ? मुझे लगता है हर गाना एक तरीके से सुनाई देता है, ओनली बिकॉज लिरिक्स और मेलेडी तो सबके पास होते हैं. सिंगर टेबल पे क्या लाता है, वो उसका कैरेक्टर है, दैट शाइन्स थ्रू द सॉन्ग. तभी नहीं तो सुनिधि जी का गाना श्रेया जी से अलग क्यों लगता है? वो उनका इंटरप्रिटेशन है, उनकी सिर्फ आवाज नहीं है.
2: अपनी आवाज की पहचान अलग होती है.
0: करेक्ट.
1: आपने अभी बात की थी याशिका महिलाओं की. भारत सरकार का तो ये हमेशा से एक प्रयास रहा है कि जेंडर इक्वालिटी वाली की जब हम बात करते हैं तो आकाशवाणी में बहुत सारी महिलाएं अपना टैलेंट इस समय इस्तेमाल कर रही हैं. अनीता जी इस समय मौजूद है और जो हमें रिकॉर्ड कर रही हैं स्टूडियो के उस पार, महिलाएं ही रिकॉर्ड कर रही हैं हमारी रिकॉर्डिस्ट. जब महिलाओं की बात हुई तो एक और फिल्म याद आ रही है मुझे, पैडमैन.
0: पैडमैन
1: और उसमें भी आपका बड़ा प्यारा सा एक गीत है सयानी. तो उसकी कुछ लाइनें अगर आप गुनगुना दें.
0: लाली लगाई के रंगीली हो गई, बिंदिया सजाई के चमकीली हो गई.

0: यशिका, जैसे आप वहां अभी भी लोगों से जुड़ रही हैं, एक हिट के बाद अभी आगे बहुत कुछ करने को है, तो उसके लिए आपने कुछ खास प्लानिंग की या कुछ सोचा है या उसको किस्मत के सहारे छोड़ दिया?
1: बहुत कुछ किया, मुझे लगता है मेरी जिंदगी बदल गया है। मैं वोकल क्लासेस कंटिन्यू कर रही हूँ, दैट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप। आई एम वर्किंग ऑन माई हेल्थ, आई एम वर्किंग ऑन द फूड आई ईट, आई एम वर्किंग ऑन माई स्लीप रेजीम, सो दैट अभी शो स्टार्ट होंगे तो एक्टिविटी लेवल एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वो और ज्यादा बढ़ गई है। लोगों को ऐसा लगता है कि एक गाना आ गया तो अब अपने आप 50 गाने आएंगे, वी आर नॉट इन दैट फेज एनी मोर। बहुत सारे सिंगर्स हैं और बहुत सारे टैलेंटेड सिंगर्स हैं, इसीलिए मैंने बोला कि स्ट्रगल का जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो गया है।
0: रियाज कितनी देर करती है?
1: 2 से 3 घंटे तो वॉइस का प्रैक्टिस, उसके बाद गाने सुनना, उनको कॉपी करके उनसे सीखना, वो सब चलता रहता है।
2: यशिका, आपने कहा कि जो मेहनत है उसका तरीका बदल गया, क्योंकि जो संगीत की इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री खुद बहुत बदल चुकी है। पहले समय में होता था कि 4-5 जो मुख्य धारा के जो गाने वाले थे, लता जी, किशोर और अभिजीत, बाद में फिर श्रेया जी, ये सब लोग आ गए, तो वो मुख्य धारा के बॉलीवुड सिंगर्स जिसे हम कहते हैं कि
0: मेनस्ट्रीम के
2: वो थे। लेकिन ये समय ऐसा समय है कि इतने सारे गाने वाले हैं, चाहे हम फीमेल प्लेबैक की बात करें या मेल प्लेबैक की बात करें, और म्यूजिक इंडस्ट्री खुद बहुत बदल रही है। एक ही फिल्म ऐसी आती है कि जिसमें कि हर गाना अलग अलग आर्टिस्ट ने गाया है,
1: करेक्ट करेक्ट,
2: है ना? तो वो जो सीन है उसमें आप किस प्रकार से अब देख रही हैं, अपनी ग्रोथ देख रही हैं?
1: जैसे कि मैंने बोला कि अब क्योंकि चीजें पहले जैसी नहीं है, तो क्या जाने के बाद भी मैं अभी भी कंपोजर्स को टेक्स्ट करती हूँ कि मुझे आपके साथ काम करना है। अब थैंकफुली ऐसा है कि मैं जिनको मैसेज करती हूँ उन्होंने तो क्या जाने सुना होता है, तो वो एक मेरे पास एक एडेड एडवांटेज है। बट आई स्टिल टेक्स्ट देम दैट आई वांट टू वर्क विथ यू। मैंने शंकर जी को मैसेज किया, जैसे ही तो क्या जाने रिलीज हुआ मैंने साउथ के सारे कंपोजर्स को मैसेज किया। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का जमाना है अभी, सब बहुत लोग फिल्म म्यूजिक से बाहर निकल के अपना खुद का म्यूजिक निकालते हैं। एवरी सिंगल डे आई एम फाइंडिंग मेरा नेक्स्ट कोलैबोरेटर कौन होने वाला है, and I'm working on so many songs, I'm very excited. So
2: तो अभी भी गाने इसी प्रकार से बन रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में?
1: बिल्कुल बिल्कुल। लेबल्स आपको कुछ लेबल्स जैसे टी सीरीज है, जी म्यूजिक है, वो कुछ सिंगर्स को साइन करता है, एंड देन फिर लेबल की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि उनको प्लेबैक दिलाया जाए, वो एक चीज होती है। बट प्री रिकॉर्डेड तो नहीं होता है कुछ भी?
2: नहीं।
1: पहले जब फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर के पास आते थे तो उनके पास सिचुएशन आती थी, उन लेरे से साथ में बैठते थे, हम लोग उसको जैमिंग बोलते हैं, साथ में जैसे बोलते हैं ना, बैठक होती थी, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी। अभी ये होता है एक चीज की जितने भी म्यूजिक कंपोजर्स हैं उनके पास अपना एक बैंक होता है मेलोडीज का, तो जब कोई फिल्म डायरेक्टर उनके पास आता है वो उनको बोलता है कि ये सीन है, तो अपने बैंक में से देखते हैं इफ एनीथिंग फिट्स इन। अगर नहीं होता तो ऑफ कोर्स दे मेक अ फ्रेश सॉन्ग, क्योंकि इतने टाइम तक जब आपको फिल्म नहीं मिलेगी तो आप खाली तो बैठेंगे नहीं, वो आर्टिस्ट है तो वो गाने बना के रखते हैं, वो प्रैक्टिस भी होती है, वट एवर यू कैन कॉल इट
2: जी। और जो रचनात्मकता है उसके लिए तो समय की जरूरत है ना,
0: बिल्कुल,
2: कि अभी आपको जरूरत पड़ी तो एकदम गाना निकालना बनाना वो थोड़ा समय तो मांगता ही है, होमवर्क मांगता है।
1: और लोगों के पास अभी टाइम नहीं है, जैसे सिंगर्स के साथ भी मैं बहुत बहुत बहुत खुशनसीब हूँ कि 6 महीने तक ऑन एंड ऑफ हमने तो क्या जाने गाया। ऑल्दो जब भी जाके गाती थी मुझे पता नहीं था कि मेरी आवाज में फाइनल होने वाला है नहीं, बट उस टाइम तक वो उतना टाइम मिला गाने को थोड़ा घर पे बैठ के ही, चाहे नॉट विद रहमान सर, बट जीने का टाइम मिला। जब लता जी आशा जी गाती थी उन लोगों की एक एक गाने के 10-10 महीने 11-11 महीने रोज बैठ के म्यूजिक कंपोजर के साथ रिहर्सल होते थे, बट अब वो नहीं होता है।
0: पुराना गीत जो आपको पसंद हो, हमारे कार्यक्रम का नाम ही गोल्ड है,
2: ये चैनल गोल्ड है जो कि ओल्ड बॉलीवुड क्लासिक के लिए जाना जाता है, तो लता मंगेशकर जी की बात हुई है तो क्यों ना हम आपकी पसंद का कोई गीत सुन ले लता जी की आवाज में।
1: एक लता जी का गाना है जो मैं बचपन से हमेशा गाती थी, और मेरे पापा मुझे कोई भी घर पे आता था तो वही गाना गाने को बोलते थे। मैं 2 लाइनें उसकी आपको सुनाती हूँ।

0: यशिका एक बात मेरे मन में आ रही थी कि अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें श्रेया घोषाल आपको मंच पे बुला रही है।
1: यशिका जो फिल्म थी मनमर्जियां, इसमें भी एक आपका गीत था, उसके बारे में कुछ बताइए।
2: मनमर्जियां मेरा दूसरा गाना था अमित त्रिवेदी जी के साथ। अमित त्रिवेदी जी को मैं 5 साल से मैसेजेस कर रही थी, उनको और उनके मैनेजर को, और वो मैसेज कभी देखा नहीं जाता था। बट रैंडमली अगेन फेसबुक केम टू माई रेस्क्यू। मेरी सारी नेटवर्किंग उस टाइम पे फेसबुक से ही होती थी, तो मैंने उनके मैनेजर को 1 लास्ट टाइम ट्राई किया और उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया। उन्होंने बोला कि अरे तुम अपने सैंपल्स भेज दो, और 2 दिन बाद मुझे रिकॉर्डिंग का कॉल आया। तब हमने पैडमैन का सयानी गाया और उसके 2 महीने बाद कुंडली के लिए उन्होंने मुझे बुलाया। बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। अमित त्रिवेदी इज रियली सपोर्टिव एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। ऐसा लगता नहीं है कि आप इतने बड़े नाम के साथ काम कर रहे हैं। बहुत पेशेंटली आपको टाइम देते हैं गाना सीखने के लिए। वेरी वेरी सपोर्टिव, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
0: अच्छा एक बात और है, जैसे एक प्रोसेस रहता है घर से स्टूडियो पहुंचने का, स्टूडियो में जाके गाने का, जैसे हम आज यहाँ इस स्टूडियो में इकट्ठे हुए हैं, तो स्टूडियो में गाते वक्त या किसी रिकॉर्डिंग में आपको कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो, एक ऐसा अनुभव जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगी?
2: मुझे लगता है रहमान सर के साथ तू क्या जाने में ऐसा हुआ, और सयानी जब हमने पैडमैन के लगाया था, बिकॉज उसमें एक अलग तरीके की आवाज थी। आप जैसे अभी सब सुन रहे हैं, मैं बहुत सॉफ्टली गाती हूँ और ये सब, बट उस गाने की नीड थी कि हम बेबाक औरतें होती है ना, उनके जैसा कैरेक्टर उनको चाहिए था। तो मुझे खुलने में थोड़ा टाइम लगा, तो हम टेक कर रहे थे एंड अमित त्रिवेदी वॉज लाइक वो बात नहीं आ रही है मुझे, आई वॉन्ट कि तुम और ज्यादा खुल जाओ। तो मैंने थोड़ा डर भी गई, मैं बोला 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। तो वो जब 2 मिनट का ब्रेक लिया तो मैं माइक पे ऐसे रिहर्स कर रही थी, और तब अनकॉन्शियसली अननोइंगली मैं बहुत खुल के गा रही थी, एंड देन ही स्टॉप मी एंड ही वाज लाइक आई एम रिकॉर्डिंग यू राइट नाउ, दैट्स व्हाट आई वांट। वो बहुत एक ब्रेक थ्रू मूवमेंट था। ही वाज लाइक अरे इतना पावरफुल गा सकती हो, गा क्यों नहीं रही हो? मैंने बोला ओके
0: नाउ। यशिका एक बात बताएं, अभी आप खुल के बोलियो और ये भी रिकॉर्ड हो रहा है।
1: बातचीत में बहुत अच्छा लग रहा है, मीठे मीठे गीत सुनने को मिल रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप कोई पुराना गाना जो आपकी पसंद का हो वो गुनगुनाएं, हम अपने सुनने वालों को वो सुनाएं, और फिर आगे बातें जारी रखें।

0: यशिका, जब आप गाने के लिए जाती हैं, स्टूडियो में जाती हैं, तो लिरिक्स पहले लिखे जाते हैं या म्यूजिक पहले बनाया जाता है? ये मैं बहुत समय से जानना चाह रही हूँ, एक राइटर हूँ, लेखिका हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या प्रोसेस क्या रहता है, ये हमारे श्रोताओं तक पहुँचना चाहिए।
1: अब ये हर कंपोजर का अलग अलग होता है, हर म्यूजिक डायरेक्टर का अलग अलग होता है। जैसे मुझे याद है, तू क्या जाने की जगह कोई और गाना था जो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था, बन चुका था, वो शूट भी हो चुका था, बट उसके बाद रहमान सर ने बोला कि मुझे कुछ बेटर गाना करना है, तो इरशाद कामिल जी ने बोला कि अब दोबारा से सेम सिचुएशन पे कैसे मैं एक गाना लिख दूं और वो सब। तो उन्होंने उनको रूम में बंद किया, उन्होंने बोला कि मुझे एक लाइन देकर जाओ, बिकॉज रहमान सर वांटेड कि एक थॉट मुझे मिल जाए जिसके ऊपर मैं मेलेडी बना पाऊं।
0: अच्छा।
1: तो तू क्या जाने में सिर्फ उन्होंने उनको एक लाइन दी दरवाजा बंद करवा के, तू क्या जाने मेरे यार हाय वाज द एसेंस ऑफ द सॉन्ग। उसके बाद सर ने मुखड़े का पूरा मेलेडी बनाया एंड देन इरशाद जी ने मेलेडी पे लिखा।
0: अच्छा।
1: बट अब जब मैं रहमान सर के यहाँ जाती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि लिरिक्स होते हैं पहले से और उसके ऊपर सर बनाते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है, बहुत कंपोजर्स ऐसे हैं जो हमेशा चाहते हैं कि लिरिसिस्ट के साथ बैठ के जैम करें, तो वो साथ में भी बनते हैं,
0: साथ में भी बनते हैं,
2: दोनों के विचार मिलते हैं, तो फिर जो रचना बनकर आती है तो वो फिर एक ही फ्रिक्वेंसी पर होती है, बिल्कुल, है ना। और वो तो गाना तो सुपरहिट होता ही है, जैसे ये गाना अच्छा चला, बहुत सुंदर चला। तो आगे की क्या योजनाएं हैं याशिका?
1: बहुत सारा रियाज करना है, बहुत सारे गाने गाने हैं, बहुत सारे शोज करने हैं, बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी रिलीज करना है जहाँ पे हम एक सिचुएशन बाउंड नहीं हो। आई एम फ्री इन द सेंस कि मुझे किसी जॉनर में रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने आप को। मुझे जैज म्यूजिक भी गाना है, मुझे जिसे बोलते हैं खुली आवाज में बेबाक लड़की का कैरेक्टर हो कुछ आवाज में, वो भी गाना है। बहुत एक्सपेरिमेंट करना है, देयर इज टू मच टू डू।
2: एक प्रश्न हमेशा रहता है कि जो भी ये हिंदी फिल्म संगीत या फिल्म संगीत के लिए गाते, पार्श्व गायन करते हैं, इनके लिए शास्त्रीय संगीत सीखना कितना

0: जरूरी है आवाज की ट्रेनिंग के लिए, क्या एक नेचुरल सिंगर जो कि बस यूं गुनगुनाते हुए ही चला है क्या वो भी कभी गा सकता है? कितना जरूरी है शास्त्रीय संगीत का ज्ञान?
1: तो फिल्म इंडस्ट्री में गाने के लिए आपको सुर में पक्का तो होना पड़ता है, ताल में पक्का होना पड़ता है, बट बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं गाने के, जैसे एक्सप्रेशन, इंटरप्रिटेशन, वो जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से भी आता है। आप खुद इमोशंस और सिचुएशंस को कैसे इंटरप्रेट करते हो, किसी और की कहानी को, उससे भी आता है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने के लिए। क्लासिकल म्यूजिक एक फाउंडेशन की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि वो आपको उसको रोज रियाज कर करके आप शुरू में आप मंच जाओगे, आपको लय में गाना आएगा, बहुत सारी चीजें हैं। पर ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, सुनिधि चौहान, किशोर कुमार जी, हम सबको पता है इन्होंने कभी क्लासिकल म्यूजिक सीखा नहीं, बट उनका इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सप्रेशन एंड लिरिक्स एंड मेलोडी वॉज सो स्ट्रांग दैट दे डिड नॉट रियली नीड क्लासिकल म्यूजिक का ट्रेनिंग। हैविंग सेड दैट, आप कुछ भी करो, आपकी अपनी आवाज को बनाने का रियाज तो आपको रोज करना पड़ता है। वो आप किसी भी टेक्निक से कर सकते हो। क्लासिकल म्यूजिक के लोग आलाप तान की रोज प्रैक्टिस कर करके अपनी आवाज को मांझते हैं, बट हम जब वेस्टर्न म्यूजिक में देखते हैं उनके पास बहुत अलग टेक्निक्स हैं जो कि मैं अब सीख रही हूँ। वो आपके पूरे मैकेनिज्म को ऐसा ट्रेन कर देते हैं कि आपकी आवाज सही जगह से निकले, सही डायनामिक्स में निकले, सही वॉल्यूम में निकले। आवाज को बनाने का रियाज रोज करना पड़ता है। क्लासिकल इज अ ग्रेट वे, आई वुड वॉन्ट टू लर्न क्लासिकल अगेन, क्योंकि वो इतना बड़ा महासागर है ना सुरों में जाने का, सो इट बिकम्स अ वेरी मेडिटेटिव एक्सपीरियंस।
2: आपके लिए क्या मुश्किल, जो आपका ऐसा एरिया जो आपको लगता है कि मुझे उस पर काम करना है?
1: मेरे लिए ऊंचा गाना प्रॉब्लम, बट उस पर बहुत काम किया है मैंने, बहुत आगे तक आ गए, बट अभी लॉन्ग वे टू गो।
0: अनीता जी, बातें तो बहुत सारी मन कर रहा है करते रहे, लेकिन घड़ी की सुइयां हमें कह रही है, साथ में हमारी रिकॉर्डिस्ट हमें इशारा कर रही है कि आपकी बात बहुत लंबी हो रही है, तो समय हो गया है समेटने का इस बातचीत को। और ये प्यारी प्यारी सी हंसी, ये मुस्कुराहट जो हमारे सामने खिलखिला रही है ये हमेशा बनी रहे, मीठे मीठे सुर बिखेरती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं आशिका सिक्का आपको, आपके फ्यूचर के लिए।
1: सो हम्बल्ड टू बी हियर, थैंक यू अनीता जी।
2: आशिका, अपने नाम की तरह आपका यश फैले।
0: आकाशवाणी तो हमेशा जो नई नई प्रतिभाएं हैं उनको सामने लाता है, सभी लोगों के सामने लाता है। हमें ये बहुत खुशी है कि लता मंगेशकर खुद अंत समय तक भी विविध भारती से जुड़ी रही, विविध भारती के साथ बातचीत करती रही। और अनीता जी, एक बात बताऊं आपको कि लता जी के घर में खुद हमेशा रेडियो में विविध भारती चलता रहता
2: है। बिल्कुल,
0: क्योंकि उनके गीत विविध भारती से बहुत बचते थे।
2: उनकी पुस्तक में भी है, लता जी के संस्मरण में उन्होंने लिखा है इस बारे में कि मैं विविध भारती को लगातार अपने घर में सुनती रहती थी।
0: जी, तो आपके भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप बहुत सारे मीठे मीठे गीत गाए, बड़े मकबूल हो, बड़े हिट हो, और हमें सौभाग्य मिले वो मीठे मीठे गीत बजाने का अपने रेडियो स्टेशन से।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।
0: और इसी के साथ समेटते हैं कार्यक्रम जिसका नाम है आज के मेहमान। और दोस्तों, आज के मेहमान हमारे साथ थी याशिका सिक्का, और मेरे साथ थी अनीता वर्मा जी।
2: जी रश्मि जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप, वैश्विक निवेशक, प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे। इस दौरान भारत के तेजी से बढ़ते नवाचार तंत्र को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप, निवेशक और टेक्नोलॉजी लीडर्स शामिल होंगे। कार्यक्रम में नवाचार, उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा रक्षा ऐसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजर सराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। इससे इंजीनियरिंग और वस्त्र परीक्षण सहित प्रमुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकेगा। ये केंद्र उन्नत विनिर्माण सुविधाएं, तकनीकी सहायता और उद्योग उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक नर्तक नर्तकियों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की। इस सामूहिक प्रस्तुति को गिनीज विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के इस उत्सव का आयोजन भारत की संगमम ग्लोबल अकादमी और श्रीलंका की समगमिज लिया ने किया। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने एक एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में आज भारत अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice, France in a short while from now alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. Prime Minister Modi yesterday reached Nice in France on the first leg of his two-nation visit to France and Slovakia. Mr. Modi will subsequently travel to Slovakia for bilateral engagements with the Slovak leadership. Prime Minister Narendra Modi says India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as the country with the world's largest healthcare program, that is Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable people. He said efforts like PM Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during next week's G7 summit in France. A senior administrative official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. In Jharkhand, 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have died in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people died in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsama districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. Indian Space Research Organization ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they have collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan 3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. A case has been registered against a US-based organization and 6 others following a complaint by the Enforcement Directorate ED alleging the illegal utilization of foreign funds through a network of foreign debit cards, including in left-wing extremism-affected areas of the country. Based on the ED complaint, Bengaluru's Kothanur police registered the case on June 11 under various provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Unlawful Activities Prevention Act. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. The event, organized by Sangamam Global Academy India and Sangamese Lia Sri Lanka, was held at Gale Phase Green in Colombo and brought together thousands of dancers from Sri Lanka, India and several other countries. The event aimed to showcase the timeless tradition of Bharatanatyam while fostering cultural ties across borders. Indian Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over parts of northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. According to the IMD, conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into some more parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, additional parts of Odisha and parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. Australia made a dream start to their FIFA World Cup 2026 campaign, defeating Turkey 2-0 in their Group D opener. Goals from Nestori Ayankunda and Connor Metcalf capped 2 clinical counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. And that is the end of this news bulletin.
3: मीडियम वेव 284.9 मीटर यानी 1053 किलोहर्ट्ज और FM 101.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी ले से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आए कार्यक्रम के शुरुआत में सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है लुटेरा फिल्म से, शिल्पा राव और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज़ों में। गीतकार है अमिताभ भट्टाचार्य और संगीतकार है अमित त्रिवेदी।

आइए आप सुनते हैं 1 2 3 फिल्म से महालक्ष्मी अय्यर और राघव सच्चर की आवाज़ों में। गीतकार है आदित्य दर और संगीतकार है राघव सच्चर।

0: अभी आप सुन रहे थे आमिर फिल्म से शिल्पा राव और अमिताभ की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा गया है अमिताभ और संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी।
1: प्रिय बीएसएनएल ग्राहकों, लद्दाख में बीएसएनएल ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। बीएसएनएल का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस से संपर्क करें।
0: ये फिल्म गीत आप आकाशवाणी ले से सुन रहे हैं। अगला गीत हम सुनवाते हैं बचना ए हसीनो फिल्म से के और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीतकार है अन्विता दत्त गुप्तान और संगीतकार है विशाल शेखर।

देसी बॉयज़ फिल्म से नीरज सिदर और हर्षदीप कौर की आवाज़ों में, गीतकार है इरशाद कमील और संगीत यह है प्रीतम।

फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं जब वी मेट फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज़ में। इस गीत को लिखा गया है इरशाद कमील और संगीत से संवारा है प्रीतम।

0: लव स्टोरी 2050 फिल्म से शान और अलका याग्निक की आवाज़ों में गीतकार है अनु मलिक और संगीतकार है जावेद अख्तर।
1: पीपल प्लीज लिसन टू मी, दिस जेंटलमैन ओवर हियर इज गोइंग टू रिसाइट सम मीनिंगफुल पोएट्री फॉर अस।
2: व्हाट?
1: करण मल्होत्रा फ्रॉम सिडनी, एज 23, करंट स्टेटस सिंगल एंड फाइनली फटरिंग।
2: नो, I can't do this. Have you lost your marbles?
3: मौसम अचानक ये बदला है क्यों?
1: Karan, it's really easy.
2: No,
1: come
2: wait,
1: on.
2: I can't. This is so unfair.

अंत में आइए आप सुनते हैं लकी फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल की आवाज़ों में। गीतकार है समीर और संगीतकार है आनंद सामी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर भारत इनोवेट्स 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैक्रों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। जनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बाज़ हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और जनूबी छत्तीसगढ़ में पहुंचने का इम्कान है। कोलंबो में 5,000 से ज़्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में ख्वातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के हमराह अब से कुछ देर बाद नीस में भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करने वाले हैं। ये अहम तकरीब भारत और फ्रांस के इख्तरा के साल के तहत हो रही है और इसमें 120 से ज़्यादा भारतीय स्टार्टअप इदारे, आलमी सरमायाकार, टेक्नोलॉजी के माहिरीन और कारोबारी अफराद शिरकत कर रहे हैं, जिसमें भारत के तेज़ी के साथ फ़रोग पाते इख्तराई इको निज़ाम की अक्कासी की जाएगी। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर मैक्रों दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खुसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों रहनुमा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सदर इमानुएल मैक्रों मुश्तरका तौर पर भारत इनोवेट्स का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब के दौरान जिद्दत तराजी, सनतकारी और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के शोबों में भारत की बढ़ती हुई ताकत का मुजाहरा किए जाने का इम्कान है। बाद में दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत करेंगे, जिसमें भारत फ्रांस खुसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा और टेक्नोलॉजी, तिजारत और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी तआवुन में मजीद इजाफा करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दो तरफा बातचीत और सदर मैक्रों की जानिब से एक जोहराने के इनेकाद के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के अगले मरहले के तहत स्लोवाकिया रवाना हो जाएंगे। फ्रांस के शहर नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में अगले हफ्ते G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के एक आला ओहदेदार के मुताबिक इस बातचीत में मुआशी तरक्की, सप्लाई निज़ाम, मसनूई ज़हानत, सरमायाकारी से मुतालिक साझेदारी और आलमी सिक्योरिटी को लाहिक मुख्तलिफ चैलेंजों पर तवज्जो मरकूज किए जाने की उम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मेयारी हिफ्ज़ाने सेहत को और ज़्यादा कम खर्च और ज़्यादा लोगों तक बहम पहुँचाने के लिए भरपूर अंदाज से काम किया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क को उस वक्त बड़े फख्र का एहसास होता है जब भारत को दुनिया के हिफ्जाने सेहत के सबसे बड़े प्रोग्राम आयुष्मान भारत के मुल्क के तौर पर जाना जाता है। इसके तहत कमज़ोर तबकों के लोगों को आला मेयार के हिफ्जाने सेहत सहूलियात फराहम की जाती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि PM भारतीय जन औषधि परियोजना जैसी कोशिशों से दवाएं कम कीमत की हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि सरकार एक सेहतमंद भारत की तामीर की खातिर अब तक की पेशरफ्त को बरकरार रखते हुए ये सिलसिला आगे बढ़ाएगी। मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत के हिफ्ज़ाने सेहत के शोबे में बड़ी पेशरफ्त हुई है, जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि सेहतमंद शहरी एक मजबूत मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत, PMJAY और आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर डिजिटल हिफ्जाने सेहत के मुख्तलिफ इकदामात तक हिफ्जाने सेहत की मेयारी सहूलियात अब पहले से कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान भारत के हिफ्जान सेहत के शोबे में बड़ी तब्दीली आई है और सभी शहरियों के लिए कम खर्च और काबिल रसाई हिफ्जान सेहत को यकीनी बनाने पर खास तवज्जो दी गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गडकरी ने कहा कि हिफ्जान सेहत से मुतालिक हुकूमत के सरकर्दा इकदामात से मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को काफ़ी तकवीत मिली है और एक स्वस्थ भारत के नज़रिए को फ़रोग हासिल हुआ है। कॉमर्स और सनत के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने भी जोर देकर कहा है कि भारत आज हिफ्जान सेहत के दुनिया के कई सबसे बड़े इकदामात में कायदाना रोल अदा कर रहा है। अकलियतों के उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि गुज़िश्ता 12 साल में मुल्क में अकलियती बिरादरियों की ज़िंदगी मेयार और मजमू सूरत हाल में नुमाया सुधार आया है। एक कौमी रोजनामे के साथ इंटरव्यू में जनाब रिजिजू ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में सबका साथ सबका विकास के नज़रिए की बदौलत इस बात को यकीनी बनाया जा सका है कि तरक्की के फ़ायदे मुआशरे के हर तबके तक पहुँचें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत पर अमेरिका में कायम एक तंजीम और 6 दिगर इदारों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस शिकायत में गैर मुल्की डेबिट कार्ड्स के नेटवर्क के जरिए गैर मुल्की फंड्स को गैर कानूनी तरीके से बरूएकार लाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसमें मुल्क के बाईं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाके भी शामिल हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की शिकायत की बुनियाद पर बेंगलुरु की कोथनूर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ दफात और गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत 11 जून को केस दर्ज किया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने मिलकर एक साथ रक्स का मुजाहरा किया, जो एक तारीखी सकाफती संगे मील है और इस तरह उन्होंने भरतनाट्यम के सबसे बड़े रक्स प्रोग्राम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कोलंबो के गोल्फेज ग्रीन में आज तारीख रकम की गई। 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम फनकारों ने एक साथ परफॉर्म करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम डांस क्लास का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। रंग, ताल और रिवायत के शानदार इम्तिजाज ने पूरे माहौल को एक सकाफती जश्न में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद पाया तकमील को पहुँचाने वाला ये तारीखी प्रोग्राम भारतीय क्लासिकी रक्स की आलमी मकबूलियत को नई बुलंदियों तक ले गया है। इस कामयाबी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का साइटेशन भारत हाई कमिश्नर संतोष झा ने फनकारों और मुंतजमीन की नुमाइंदगी करते हुए हासिल किया। भारत और श्रीलंका के सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने वाला ये प्रोग्राम फन और विरासत की एक नाकाबिले फरामोश मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, कोलंबो।
0: झारखंड में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में कम से कम 7 अफराद की मौत हो गई। इनमें 3 खवातीन और 10 साल का एक लड़का शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रांची में 2 अफराद की मौत हुई, जबकि गढ़वा जिले में भी 2 अफराद मारे गए। दीगर अमवात की इत्तला चित्रा, गिरिडीह और सरायकेला खरसवान जिले से मिली है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक के बकिया हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ और हिस्सों, नीज जुनूबी छत्तीसगढ़ में पहुँचने के लिए हालात साजगार हैं। मौसमियात महकमे के मुताबिक शुमाल मशरकी खित्ते, अंडमान निकोबार जजायर, केराला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी आज तेज बारिश होने का इम्कान है। खवातीन के ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत आज ग्रुप ए में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच बर्मिंघम में एजबेस्टन में खेला जाएगा और ये भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के शहर नीस में मीटिंगों के साथ यूरोप का अपना दौरा शुरू कर दिया है। जनाब मोदी अब से कुछ देर बाद फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों के साथ मिलकर भारत इनोवेट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं। आज सदर मैखों के साथ दो तरफा बातचीत में खसूसी आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। झारखंड में बिजली गिरने के अलग अलग वाकयात में 7 अफराद की मौत हुई है। कोलंबो में 5,000 से ज्यादा भरतनाट्यम डांसर्स ने सबसे बड़े भरतनाट्यम रक्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। और क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत पाकिस्तान के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
3: Good afternoon. This is Akashwani and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France Special Global Strategic Partnership to be held later today. Seven people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in next 2 to 3 days. Over 5,000 Bharatanatyam dancers create Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson in Colombo. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Bharat Innovates in Nice in a short while from now, alongside French President Emmanuel Macron. The flagship event being held under the India-France Year of Innovation will bring together more than 120 Indian startups, global investors, technology leaders and entrepreneurs, showcasing India's rapidly expanding innovation ecosystem. Later in the day, Prime Minister Modi and President Macron will hold bilateral talks to review the progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss key regional and global issues. More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi and President Emmanuel Macron will jointly launch Bharat Innovates, bringing together more than 120 Indian startups, investors and technology leaders from across the world. The event is expected to showcase India's growing strength in innovation, entrepreneurship and emerging technologies. Later, the two leaders will hold bilateral talks to review progress in the India-France Special Global Strategic Partnership and discuss ways to further enhance cooperation in areas including technology, trade and defense. Following the talks and a luncheon hosted by President Macron, Prime Minister Modi will leave for Slovakia on the next leg of his visit. This is Shailesh Menon for Akashwani News, Nice, France.
3: Talking to Akashwani, co-founder of Sarvam AI expressed his appreciation for the first-of-its-kind initiative by the government of India to bring a large number of startups onto a single arena, giving them excellent opportunities and exposure.
5: My name is Vivek Raghavan. I am the co-founder of Sarvam AI. This is actually a very exciting event. I think for the first time, the government of India has made an initiative to bring so many startups here to make them well-known in France. I think this is a first-of-its-kind initiative.
3: Co-founder of Quantfluence, Aditi Vaidya, highlighted how the maiden edition of Bharat Innovates was giving startups like theirs a platform to meet investors, researchers, as well as potential partners and customers.
6: I'm here at the Bharat Innovates 2026 maiden edition. I'm Aditi Vaidya. I'm a co-founder at Quantfluence. At Quantfluence, we have been building India's first scalable photonic quantum computer from ground up, scalable to 1 million qubits. And while our quantum computer evolves, we have also built this quantum-inspired hardware.
3: Chetan from Dhruv Space explained platform like Bharat Innovates allows startups to place themselves before a global market, lending greater credibility to the company as well as to India's startup ecosystem as a whole.
7: This is Chetan from Dhruva Space. Dhruva Space is a satellite manufacturing company based out of Hyderabad. We specialize in satellite full-stack solutions. That means building a satellite like this. We build anywhere from 10 kg to 50 kg to 150 kg satellites.
3: Traditional Slovak hospitality will be accorded to Prime Minister Narendra Modi in Bratislava this evening. More from our correspondent in Bratislava.
8: Prime Minister Narendra Modi will be given a traditional welcome with bread and salt upon his arrival in Bratislava. According to Slovak culture, guests and dignitaries are greeted with a loaf of bread and a small dish of salt. Bread represents prosperity, while salt symbolizes value, friendship and protection. A renowned children's folk group from Myava region of Slovakia will perform a traditional Slovak dance to welcome the Prime Minister. A performance of Vande Mataram by the Luknisa Ensemble will be another highlight of the arrival ceremony in Bratislava. Midi M. Palluruthi, Akashwani News from Bratislava in Slovak Republic.
3: Prime Minister Narendra Modi has said that India has worked to make quality healthcare more affordable and accessible over the last 12 years. In a social media post, Mr. Modi said that the nation feels proud when it is known as a nation with the world's largest healthcare program, Ayushman Bharat, which provides top quality healthcare to the most vulnerable. He said that efforts like PM Bharatiya Janaushadhi Pariyojana have made medicines affordable. The Prime Minister expressed hope that the government will keep building on the ground covered so far in order to build a healthy India. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said that India's healthcare sector has witnessed a transformative change over the past decade under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, with a strong focus on ensuring accessible and affordable healthcare for all citizens. In a social media post today, Mr. Gadkari said government's flagship healthcare initiatives have significantly strengthened the country's health infrastructure and advanced the vision of a Swasth Bharat. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal also emphasized that India today leads several of the world's largest healthcare initiatives. Union Minister of Minority Affairs Kiran Rijiju has said that the life, quality and overall situation of the minority communities in the country have improved significantly over the past 12 years. In an interview with the National Daily, Mr. Rijiju noted that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, the vision of Sabka Saath, Sabka Vikas has ensured that the benefits of development reach every section of the society.
9: Minorities are better in India 12 years after Modi ji has become the Prime Minister. The life, the quality, the overall situation of minority communities has become better because life of every Indian has become better.
3: In Jharkhand, at least 7 people, including 3 women and a 10-year-old boy, have been killed in separate lightning strike incidents across the state over the past 24 hours. Police said 2 people lost their lives in Ranchi and 2 people were killed in Garhwa district. The other fatalities were reported from Chatra, Giridih and Saraikela Kharsawa districts. Authorities have sent the bodies for post-mortem examination. The Criminal Investigation Department, CID, is interrogating Trinamool Congress MP Abhishek Bandyopadhyay for his alleged involvement in signature forgery case of party MLAs. Today, Abhishek arrived at the CID headquarters, Bhavani Bhavan, in Kolkata. The CID is investigating the case following the Calcutta High Court order. It is alleged that Abhishek Bandyopadhyay forged signatures of the newly elected MLAs of Trinamool Congress after the Vidhan Sabha election in West Bengal for selection of leader of opposition in the assembly. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has informed that Karnataka has received 5 times more central tax devolution as against the allocation during the UPA tenure. She was addressing the Vikasit Bharat Sankalp Samavesh in Bengaluru today. She refuted the allegations of Congress-led state government in Karnataka that Karnataka is deprived of central allocations. The government has appointed noted economist Professor Alok N. Sharma as the chairman of a high-level technical expert committee on labour statistics. The committee has been constituted to strengthen and periodically review labour market indicators and assess the evolving structure of India's labour market. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. A historic cultural milestone was achieved in Colombo today as more than 5,000 Bharatanatyam dancers performed together, clinching the Guinness World Record for the largest Bharatanatyam dance lesson. More from our correspondent.
2: In a spectacular celebration of shared culture and unity, more than 5,000 Bharatanatyam dancers came together at Colombo's Goldface Green today, creating history with the world's largest Bharatanatyam dance lesson. The Guinness World Record citation was presented following the performance, with Indian High Commissioner Santosh Jha receiving the certificate on behalf of the performers and organizers. The breathtaking performance transformed the iconic seaside venue into a vibrant showcase of tradition, discipline and cultural excellence. The event turned out to be a landmark moment for classical dance and a proud tribute to the enduring cultural bonds between India and Sri Lanka. Ahmed Muin Farooqi, Akashwani News, Colombo.
3: In Odisha, the three-day Raja festival began today with a celebration of Pahili Raja, ushering in the onset of the monsoon and the Odia month of Ashada. The festival symbolizes reverence for Mother Earth and reflects the state's rich agrarian traditions. More in this report.
10: The Raja festival has begun across Odisha from today with the observance of Pahili Raja, one of the state's most cherished cultural celebrations. Raja honors womanhood and symbolizes the fertility and regenerative cycle of Mother Earth. The festival derives its name from Rajaswala, reflecting the belief that the earth, like women, undergoes a period of rest and rejuvenation. Consequently, agricultural activities have remained suspended during this period. Women and girls are at the heart of the festivities. They are adorned in new attire, relieved from household chores, and seen participating in traditional customs including swings, folk songs and community celebrations. Homes across Odisha are resonating with the aroma of festive delicacies such as Podo Pitha, Arisa Pitha, Chakuli Pitha and the popular Raja Pan, which are being shared with family, neighbors and friends. Raja is a unique celebration of womanhood and Odisha's enduring reverence for nature and its life-sustaining processes. Prakash Das, Akashvani News, Bhubaneswar.
3: Indian Space Research Organization, ISRO Chairman V. Narayanan has informed that they've collaborated with the Department of Atomic Energy to develop an advanced artificial heating system that can protect lunar lander from the freezing weather of the moon. Addressing the CSIR RISE conclave in Bengaluru, the ISRO chief explained that Chandrayaan-3 lander Vikram, fueled by solar energy, operated only for 14 days on moon. ISRO will now work with the Atomic Energy Department to develop a lunar lander that can survive on the moon for up to 200 days. The White House has said that U.S. President Donald Trump will meet Prime Minister Narendra Modi and other world leaders during the next week's G7 summit in France. A senior administration official said discussions are expected to focus on economic growth, supply chains, artificial intelligence, investment partnerships, and a range of global security challenges. The India Meteorological Department, IMD, has forecast favorable conditions for further advancement of southwest monsoon into remaining parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, some more parts of Odisha, and some parts of South Chhattisgarh during the next 2 to 3 days. The IMD predicted heavy rainfall over parts of the northeastern region, Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The weather agency said that thunder squall conditions are likely to prevail over Madhya Pradesh, Telangana and West Rajasthan till tomorrow. It added that Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh, Jharkhand, Maharashtra, Uttarakhand, Interior Karnataka and West Bengal will witness thunderstorms

0: counter-attacking moves as the Socceroos claimed all 3 points. Australia remained compact and organised throughout the contest, frustrating their opponents and capitalising on their chances. For Turkey, competing in their first World Cup in 24 years, the much-anticipated return to football's biggest stage ended in disappointment. Earlier in the day, Scotland moved to the top of Group C with a hard-fought 1-0 victory over Haiti in their Group C opener in Massachusetts. With this, Scotland ended a 28-year wait for a World Cup victory. And in ICC Women's T20 World Cup, India will begin their campaign against arch rivals Pakistan in a Group A fixture at Edgbaston in Birmingham today. The match will start at 7 p.m. India time. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi begins his two-nation Europe visit with engagements in Nice, France, to inaugurate Bharat Innovates 2026 jointly with French President Emmanuel Macron in a short while. Bilateral talks with President Macron to review progress in India-France special global strategic partnership will be held later today. 7 people killed in separate lightning strikes in Jharkhand since yesterday. Southwest monsoon to advance into parts of Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Odisha and South Chhattisgarh in the next 2 to 3 days. And in ICC Women's T20 World Cup, India to begin campaign against Pakistan in Birmingham this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक तेलंगाना आंध्र प्रदेश ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने कोलंबो में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत आज शाम बर्मिंघम में पाकिस्तान के साथ अपना पहला मैच खेलेगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंचे यहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत को अविस्मरणीय बताया श्री मोदी अब से कुछ ही देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ नीस में भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक भारतीय स्टार्टअप वैश्विक निवेशक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अग्रणी लोग और उद्यमी जुटेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे
2: कार्यक्रम में नवाचार उद्यमिता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित किया जाएगा इसके बाद दोनों नेता भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा और प्रौद्योगिकी व्यापार तथा रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर द्विपक्षीय बातचीत करेंगे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा
3: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा लुचनिका एंसेंबल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव

श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुँच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर

0: चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमरीका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर राजा पान की खुशबू फैली हुई है। राजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Medium wave kilohertz chiksong ap chung ngasum yang na meters pan gib ge ge chuk ge chitang chu sur ku yang fm megahertz gyan ang chiktang chu sur chik thong ne ngashe akash pani le ne jin chiktang in nimi chu chot ni stang pecha du kasata chu chot ni stang skar ma ngap chung ang chuk pala da selorik san chisla pulin chamai sang sungla stand in shera be salkani ilubo sanasat

प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये मौका बिल्कुल न गवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: Dagsangi charang e standin shetra bisalkani junglu jik sanajat kasata chewang nur butang topa gune salkani yang junglu rigang sanajat

डॉक्टर शरण शांतंग संजीवनी इसको ने क्या दिल ने कहा ये फिल्म लुबो सनाजात फिल्म लुरी क्रिमिना कसता के केतंग सुनिधि चौहान इसको ने कुछ तो है ये फिल्म लुबो सनाजात लूर सुमत जतकन समीर यंग लुयांग श्रिकन अनुमले।

0: समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर खासतौर से चर्चा हो रही है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तनकारी अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ भी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि आज प्रश्न ये नहीं है कि भारत में नवाचार हो रहा है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि भारत के साथ मिलकर कौन नवाचार करे। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी का वहां पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सागर जिले में आयोजित एक समारोह में लाडली बहना योजना की 37वीं किस्त जारी की। राज्य भर में 25 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों के खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। मुख्यमंत्री ने देवरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 191 करोड़ रुपए की 53 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना ज्यादा धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4,00,000 करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने ओमान तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 के इंजन में खराबी आने की जानकारी दी है। इसमें सवार 14 भारतीयों को बचा लिया गया है। दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि ओमान के अधिकारियों के साथ तालमेल से बचाव अभियान जारी है। अंतालिया में तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में भारत के धीरज बोमा देवरा और किशोरी कुमकुम मोहद ने स्वर्ण पदक जीते। फाइनल में रिकर्व मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरिया की ओह ये जिन और किम जे द्योक को हराया। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान से खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात 10:30 बजे जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। वहीं रात 1:30 बजे नीदरलैंड्स और जापान होंगे आमने सामने। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron are holding delegation-level talks at the historic Villa Carolus at Nice in France. The discussion between the two sides focused on expanding the special global strategic partnership between two countries, covering defense, technology and trade. The two leaders also interacted during a walk-and-talk session at Villa Carolus. Earlier, Prime Minister Modi and French President Macron jointly inaugurated Bharat Innovates event at Palada Expositions at Nice in France today. The landmark initiative showcases India's rapidly expanding innovation and startup ecosystem. The flagship event, being held under the India-France Year of Innovation, brings together over 120 Indian startups and leading investors, technology leaders, and premier educational institutions from across the globe. Speaking on the occasion, Prime Minister Modi highlighted India's startup revolution by saying that the country's youth are developing solutions for global challenges in a number of areas.
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स
2: Addressing the gathering, French President Macron praised India's emergence as a global innovation powerhouse and said the question today is no longer whether India is innovating, but who will innovate with India.
3: A country with 1.4 billion inhabitants, a country who pays on know-how and research, knowledge and training as many engineers as Europe and the US combined, more than 1 million per year. So in every respect, a country with research, innovations and frontier models is spearheading global innovation.
2: External Affairs Minister Dr. Jaishankar, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, National Security Advisor Ajit Doval, Principal Scientific Advisor Ajay Kumar Sood, Infosys founder Narayana Murthy, and several prominent business leaders were also present on the occasion. Following the inauguration, Prime Minister Modi and French President Macron visited the exhibition and interacted with startup founders, researchers, and investors participating in the event. INS Sharada has successfully concluded its visit to Colombo, Sri Lanka. The Ministry of Defense said the visit further strengthened maritime cooperation and friendship between India and Sri Lanka. The visit featured a series of professional training and sporting engagements with the Sri Lankan Navy. The Ministry further said that the visit underscored the enduring maritime partnership between India and Sri Lanka and reaffirmed their shared commitment to regional maritime cooperation and security in line with the vision of Mahasagar. The Indian Embassy in Oman said that an Indian-flagged mechanized sailing vessel, Virat 1, carrying 14 Indians, experienced an engine failure off the coast of Oman. In a social media post, the embassy informed that in a closely coordinated and ongoing rescue operation at sea, 11 of the 14 crew members of the vessel have been rescued and taken on board by MV Jabal Ali 9. The embassy added that the rescue operation of the remaining members will be completed shortly. Sources said that the vessel sank because of mechanical failure. The government has debunked a WhatsApp message circulating online that falsely claims applications are being accepted for free laptops under the National Student Laptop Scheme 2026. The fact-check unit of the Press Information Bureau, PIB, has clarified that this claim is fake and the government has not announced any such scheme. In cricket, India will begin their ICC Women's T20 World Cup campaign against arch-rivals Pakistan in a Group A match at Edgbaston in Birmingham this evening. The match is scheduled to start at 7 p.m. Indian time. Women in blue have dominated this rivalry in Women's T20 internationals, winning 13 of the 16 matches against Pakistan. In the upcoming week, domestic markets are expected to take directions from a series of high-impact global events and key domestic economic data releases. Investors will closely track the U.S. Federal Reserve's policy meeting outcomes, the Bank of Japan's interest rate decision, developments around the potential U.S.-Iran peace agreement, and movements in crude oil prices. Markets participants will also watch India's wholesale inflation data for May, along with other key macro indicators, including employment figures, import-export data, and the country's foreign exchange reserves. And with that, we end this news bulletin.
4: ngajhi akashwani lene jun jiktan phetogochot tuktang skarmaschu chadu kasata gamil peskatlon degrim sanata degrim pulkan konchuktashi yang degrim ekotik zatkan sona mangchu

जुले व अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आकाशवाणी के प्रोग्राम फिल्म मैगजीन में और मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा।

दोस्तों आज के इस फिल्म मैगजीन प्रोग्राम में हम बात करेंगे वन ऑफ द लेटेस्ट और थ्रिल से भरपूर मूवी धुरंधर के बारे में और साथ ही सुनेंगे इस मूवी के सुपरहिट सॉन्ग्स को भी।

दोस्तों, शुरू करते हैं फिल्म के मेन कैरेक्टर रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह इस फिल्म में जसकीरत सिंह रांगी का रोल प्ले कर रहे हैं, जो अंडरकवर एजेंट बनकर हमजा अली मजारी के नाम से कराची के क्रिमिनल सिंडिकेट में शामिल होता है। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना गहरा हुआ, जो अरिजीत सिंह की आवाज़ में एक बेहद सोलफुल रोमांटिक सॉन्ग है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद भी किया है।

0: अगर मूवी में रणवीर के मिशन की बात करें तो उसका मेन टारगेट इंडिया के खिलाफ चल रहे एक बड़े टेरर नेटवर्क को खत्म करना और उनके मास्टरमाइंड मेजर इकबाल को ढूंढना है। आइए सुनते हैं इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक। ये एक हाई एनर्जी सिनेमेटिक सॉन्ग है जो एक्शन सीन्स को परफेक्ट बैकग्राउंड देते हैं।
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

मूवी में आगे जाके इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आते हैं। जैसे जैसे वो अंडरवर्ल्ड हायरार्की में ऊपर पहुंचता है, उसकी पुरानी जिंदगी और सच्चाई सामने आने लगती है, जो इस सस्पेंस थ्रिल को और भी बढ़ा देती है। अब सुनिए जैस्मिन सैंडलर्स और मधुबंती बागची का ये पेपी डांस ट्रिक, जो रील्स और पार्टीज में धूम मचा रहे हैं।

अगर फिल्म की दूसरी स्टार कास्ट के बारे में बात करें तो फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और इसमें रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त और आर माधवन लीड रोल्स में थे। आइए सुनते हैं शहजाद अली और इरशाद कामिल के लिरिक्स के साथ एक डीप इमोशनल ट्रैक जो सुनने वालों के दिल को छू लेता है।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम फिल्म मैगजीन, जिसे आज प्रस्तुत कर रही थी सायरा बानो। हम आकाशवाणी के लिए केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ngaji akashwani lene shun chiktangin kasata tusu tsapisngne ladaksana nasultang dilshat sanajat
1: प्रिय BSNL ग्राहकों, लद्दाख में BSNL ने अपने 4G टावर्स की सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। BSNL का पॉइंट ऑफ सेल बनकर एक्स्ट्रा इनकम बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी BSNL ऑफिस से संपर्क करें।
2: सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख नंगा निस्तुंग इशुर सरुक निशुर सब्दुन एकेडमिक सेशन एपिया एडमिशन गुजुक सोंगतनो लोपथुक गुने सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी नंगा जान तंग मिदावे थपलिंग नंगशिन लोपजुंग गुन लेन थुपचिस यतनो इनंगा एमटेक एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट साइंस एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी एमए पब्लिक पॉलिसी बुद्धिस्ट स्टडीज एमएससी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स बुद्धिस्ट ट्रांसलेशन टिबेटन लैंग्वेज एंड लिटरेचर बुद्धिस्ट फिलोसफी एंड मेडिटेशन टेक्निक लोपजुंग सालचिसनो लोपथुक गुनला Lopox UGC Nangshin Topjisinok, Gate Tang CUET, Yangjan Competitive Ryukskun Lengos Metmanok, UGC Teams Nangshin, Program Redenanga Loptuk Jipju Lenchisinok, MTech Tang MSc Program Gun, IIT Madras Tang, IIT Kanpur Gute Topjisinok, Yang MA Program Gun, Sindhu Central University Kalacheka Topjisinok, Tene Loptuk Gune, Sham Jongse Kalache Zertang Ekayotkan, Sindhu Central University Nanga Admission Lenajat.

0: सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: घर घर सूर्य घर।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा।
3: 20,000 का लोन तुरंत।
4: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
4: वो भी जांच कर।
3: हो गया इंतजाम,
4: पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है
1: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहलें शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
0: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
2: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
3: फ्रंटियर मॉडल्स इज स्पीयरहेडिंग ग्लोबल इनोवेशन।
0: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: Trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
0: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिपेक्ष है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं और इसके चलते जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूंगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का विषय बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैरिस डेस एक्सपोजिशन में भारत इन्वेस्ट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में आईसीसी खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। फरीकैन के दरमियान तबादले ख्याल में दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा, टेक्नोलॉजी और तिजारत समेत कलीदी शोबों में खसूसी आलमी जाम शराकतदारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ कौमी

0: इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के टैलेंट और यूरोपीय कैपिटल के दरमियान एक पुल के तौर पर उभर रही है जो नौजवान इख्तिराकारों को आलमी महारत के साथ मुंसलिक होने के नए मौके वज़ा कर रही है। भारत के स्टार्टअप इनकलाब को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आलमी चैलेंजों के लिए उन शोबों में हल तैयार कर रहे हैं जो मसनूई जहानत और खलाई टेक्नोलॉजी से लेकर माहौल साजगार तवानाई एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और दिफाई इख्तरा तक का अहाता करते हैं। उन्होंने वाजे किया कि आज भारत में 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हैं और ये इंसानियत के लिए टेक्नोलॉजी के उसूल के जरिए इंसान मरकूज जिद्दतकारी की क्यादत के मॉडल को फरोग दे रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: भारत फ्रांस ताल्लुकात की तकवियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि जब बहुत से मुल्क तिजारत और जामे तआवुन में मसरूफ हैं ऐसे में चंद मुल्कों के ताल्लुकात को ही मुश्तरका विजन के साथ साथ एक जैसे मफादात की रहनुमाई हासिल है। उन्होंने भारत फ्रांस शराकतदारी को एक ऐसी फरोग पाती हुई शराकतदारी करार दिया जिसकी जड़ें बाहमी एतमाद मुश्तरका अखदार और मुस्तकबिल के लिए एक जैसे नजरिए तक फैली हुई हैं।
1: दुनिया में अलग अलग देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, अलग अलग देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी होती है, लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो शेयर्ड इंटरेस्ट के साथ साथ शेयर्ड विजन से भी ड्राइव होते हैं। भारत और फ्रांस का रिश्ता कुछ ऐसा ही है।
0: इज्तिमा से खिताब करते हुए फ्रांस के सदर मैखों ने एक आलमी इख्तराई पावर हाउस के तौर पर भारत के उभरने की सताइश की और कहा कि आज सवाल ये नहीं है कि भारत इख्तरा कर रहा है बल्कि सवाल ये है कि भारत के साथ कौन इख्तरा कर रहा है। उन्होंने इंजीनियरिंग के टैलेंट के भारत के वसी जखीरे को उजागर किया और भारत की तकनीकी महारत के तौर पर चंद्रयान मिशन जैसी हासिल करदा मुल्क की कामयाबियों की सताइश की। सदर मैखों ने कहा कि भारत इन्वेस्ट्स भारत के इख्तराई को निज़ाम और फ्रांस के वसी तकनीकी मंजरनामे के दरमियान एक मजबूत पुल वजा करता है। उन्होंने इस पहल के पहले एडिशन की भारत से बाहर मेजबानी को फ्रांस के लिए एक एजाज करार दिया। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आज़ादी के बाद से भारत के सबसे तवील मुद्दत तक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनने पर भी मुबारकबाद दी।
2: The world seeks trusted and reliable partners.
3: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
2: And a scale that few can match.
0: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, सनत और कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, प्रिंसिपल साइंसी मुशीर अजय कुमार सूद, इन्फोसिस के बानी नारायण मूर्ति और बहुत से सरकर्दा कारोबारी लीडर भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आलमी जोग्राफियाई सियासी और तकनीकी तब्दीली के दौर में एक भरोसेमंद और काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर उभर रहा है। जनाब गोयल ने कहा कि इस तकरीब में शिरकत करने वाले 120 इख्तराकार भारत की सलाहियतों के सिर्फ एक हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने फ्रांस के कारोबारियों को दावत दी कि वो भारत में सरमायाकारी डिजाइनिंग जिद्दतकारी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए मकामी और आलमी मंडियों दोनों के लिए शराकतदारी को मुस्तहकम करें। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुज़श्ता रात फ्रांस के शहर नीस पहुंचे थे जो फ्रांस और स्लोवाकिया के उनके 6 रोजा दौरे की शुरुआत है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी आज रात स्लोवाकिया जाएंगे। भारत में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की काबिले बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों किसानों ख्वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए।

0: आकाशवाणी के खबरों का शोभा एक खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम मुल्क के शहरियों की जिंदगियों में आसानी पैदा करने के लिए हुकूमत के जरिए किए जाने वाले इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस्लाहात के 12 साल एतमाद के 12 साल रहे हैं, ख्वाह वो GST हो, फेसलेस टैक्स हो या फिर डिजिटल इंडिया। हर पहल ने शहरियों को ये एहसास दिलाया है कि ये भी मुल्क के मेमार रहे हैं। मरकजी बजट 2026 में आमदनी, टैक्स स्लैब और शरह में जामे नजरसानी को इस तरह तैयार किया गया है कि तमाम टैक्स अदा करने वालों को फायदा पहुंचे। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात ने टैक्स के अमल को सहल बनाया है और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा की है। आकाशवाणी न्यूज के साथ बातचीत में फिल्म प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर समीर दीक्षित ने कहा कि GST इस्लाहात इस हुकूमत के सबसे बड़े पॉलिसी साज फैसलों में से एक है।
2: GST को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
1: नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है और इसको सियासत और पॉलिसी साजी के मामलों में शामिल किया है। भारत 6G टेक्नोलॉजी में आलमी लीडर बनने की राह पर गामजन है। 6G से मुतालिक आलमी पैटर्न में तकरीबन 10% शराकत दारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बातचीत करते हुए इथरनेट एक्सप्रेस के CEO महेंद्र तिवारी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के इलाकों और हाशिया पर रह रहे लोगों की जिंदगियों में माविन साबित हो रहा है। गुज़श्ता 12 वर्षों में NDA हुकूमत ने शहरियों के मेयारे जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए हैं, जिसमें आवामी सहूलियात और आसान तर्ज जिंदगी सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत की शक्ल अख्तियार कर चुका है। यह हुकूमत के रहनुमा उसूलों पर कारबंद रहने के अज्म की अक्कासी करता है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 8 से 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 40 से 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि यह पेशरफ्त, पॉलिसी इस्लाहात, बढ़ती हुई निजी शराकतदारी और तेजी के साथ तोसी पाते हुए अख्तराई इको निजाम के बायस है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के खलाई शोबे की कायापलट तब्दीली मुल्क भर में होने वाली वसी तर तब्दीली की अक्कासी करती है, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज से बाहर निकलकर कौमी शऊर का एक हिस्सा बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों की इंतहाई नुमाया कामयाबियों में से एक साइंस और माशरे के दरमियान बढ़ता हुआ राबता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वजीर मौसूफ ने कहा कि अवामी मुबाइसे में साइंस और टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई अहमियत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस विजन की अक्कासी करती है, जिसके तहत उन्होंने साइंस पर मबनी इकदाम को मुसलसल कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल हेल्थ, डीप ओशन मिशन और गगनयान जैसे प्रोग्रामों ने साइंस और इख्तरा को भारत की तरक्की के सफर के मरकज में लाने में अहम रोल अदा किया है। चंद्रयान 3 जैसे मिशन ने खलाई साइंस को वसीतर अवामी दिलचस्पी का मौजू बना दिया है, जिसके नतीजे में मुल्क भर के शहरियों में गैर मामूली बेदारी और दिलचस्पी पैदा हुई है। खला, जौहरी तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में भारत की बढ़ती हुई सलाहियतों ने आलमी सतह पर मुल्क की पोजीशन को मजबूत किया है। इन हुसूलियाबियों से पैदा होने वाले एतमाद ने मकामी टेक्नोलॉजी की साख्त में इजाफा किया है और भारत को एक काबिले एतमाद टेक्नोलॉजी के शराकतदार के तौर पर मुस्तहकम किया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर पेश आए एक हादसे में बच्चों समेत 8 अकीदतमंदों की उस वक्त मौत हो गई जब उन्हें ले जाने वाली एक पिकअप गाड़ी सड़क के किनारे खाई में गिर गई। ये हादसा मलाशिरस तालुका में महासवण पंढरपुर पर वाक़े तुंदलवाड़ी के करीब पेश आया। अकीदतमंदों का ताल्लुक पंढरपुर तालुका के रजनी गांव से है और ये सब सिद्धनाथ मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद वापस आ रहे थे। जख्मियों को इलाज के लिए पंढरपुर मुंतकिल किया गया है। इस दौरान महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। इसके साथ उन्होंने महलूकीन के लवाहकीन के लिए 5-5 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया है। ओमान में भारतीय सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय परचम परदार तिजारती जहाज विराट वन के तमाम 14 भारतीय अमले के अफराद को बचा लिया गया है। इस जहाज के इंजन में ओमान के साहिल के करीब खराबी हो गई। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में सिफारतखाने ने कहा कि अमले के अफराद महफूज हैं और सेहतमंद हैं। उन्हें दूसरे जहाज MV जबले अली 9 पर पहुंचा दिया गया है। सिफारतखाने ने मजीद कहा कि अमले के अफराद मुंबई के लिए रवाना किए जा रहे हैं। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सफारतखाने ने आज कहा कि भारतीय बाशिंदे निशांत उधनम के से मुतल्लिक ओमान के मकामी हुक्काम, बंदरगाह के हुक्काम और जहाजरानी कंपनियों के साथ फाल तौर पर ताउन कर रहा है। क्रिकेट में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के इफ्तिताही मैच में बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत ने पाकिस्तान के सामने जीत के लिए 171 रन का निशाना रखा है। अब से कुछ देर पहले तक पाकिस्तान ने 5 ओवर्स में एक गेंद में एक विकेट पर 40 रन बना लिए थे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका के ह्यूस्टन में ग्रुप ई के मैच में जर्मनी का मुकाबला कुरासाओ से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक ये मैच आज रात 10:30 खेला जाएगा। डलास में ग्रुप एफ एक के मैच में दूसरा मुकाबला नीदरलैंड्स और जापान के दरमियान होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक देर रात 1:30 पर खेला जाएगा। ईरान ने कहा है कि उसने मुजवजा मुफाहमत नामे से मुतल्लिक अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया है, जिसका मकसद अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी को खत्म करना है। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में तारीखी विला केरलोस में वफ्द की सतह की बातचीत की। उन्होंने मुख्तलिफ कलीदी शोबों में दोनों मुल्कों के दरमियान खसूसी आलमी जाम शराकत दारी को तोसी देने पर तवज्जो मरकूज की। दोनों लीडरों ने पैलिस डेफ एक्सपोजिशन में इनोवेट्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह किया। भारत की खलाई मईशत अगली दहाई में मौजूदा 9 अरब डॉलर से बढ़कर तकरीबन 45 अरब डॉलर मालियत की हो जाएगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक खाई में एक गाड़ी के गिरने से 8 यात्री हलाक हो गए। ओमान साहिल के करीब एक जहाज से इंजन खराब होने के बाद अमले के तमाम 14 भारतीय अफराद को बचा लिया गया है। और क्रिकेट में बर्मिंघम में ICC खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में भारत ने पाकिस्तान के लिए 171 रन का जीत का निशाना रखा है। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
4: मुझे आकाशवाणी लेने छाने छुचोत को तंग पेचा दो कास्त छुचोत अर्चुचुक पासोनम स्पाल सिस्तां ठोपागुने सालकने जुंगलूरी सनजात